0: इजाजत हो तो सुना।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: जो रेडियो मस्ती के साथ
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, संडे की सुबह है और आप कनेक्टेड हो चुके हो आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। मैं हूं मनी और साथ देने वाली हूं 8 बजे तक तो मीठे से आपको जगाने वाले हैं आपके ही चिल्लैक्स शो में। तो यहीं पर साथ देते रहना आरएम टू रेडियो मस्ती पर।

मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

करवा है। बीवी बिगड़े शौहर अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े

बोली जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी देने

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

जी फिर लौट के आई, अरे नफरत हारी ऊपर जीती लुटी खुशी पे लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए।

0: Chillax with Radio Masti.
1: महफिल तो सज चुकी है क्योंकि आप जो कनेक्टेड हो चुके हो आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. वैसे वेलकम सायरा बानो जी और अब्दुल जी के लिए जो कनेक्टेड है सुबह सुबह हमारे साथ. फ्रेंड ऑफ कोर्स से वी हैव रेशमा जी. तो नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं अपने विराज के लिए मम्मी सीता, पापा देवान, दीपा रति और यशस्वी बोबी किशन के लिए. तो हो जाए आपके नाम गाना.

0: Chillax, Chillax, Chillax with Radio Masti,
1: your number one Bollywood radio station.
2: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो.
3: Hey Tony Fernandez, baby.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: यस अभी टाइम हो चला है आपके राशि फल का, तो चलिए जानते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं. स्टार्टिंग विद
2: एरीज मेष राशि.
1: आज कॉन्फिडेंस आपका फुल ऑन रहने वाला है. अगर कोई काम काफी समय से पेंडिंग था तो उसे कंप्लीट करने का परफेक्ट दिन है. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी मिलेगा. लकी कलर आज आपका है रेड और लकी नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: रिलैक्स मूड ऑन रखिए. हर बात का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर शॉपिंग के लिए दिन अच्छा है. बस इम्पल्सिव खर्चों से आपको बचना है. लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज कॉन्वर्सेशंस आपके फेवर में है. किसी पुराने दोस्त का मैसेज या कॉल आपके मूड को एकदम फ्रेश ही फ्रेश कर देगा. दिल की बात कहने का सही वक्त

0: है तो आप वो कीजिएगा। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: अपनी सेहत और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दे दीजिए। थोड़ी सी वॉक या अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना आपको रिचार्ज कर देगा यूं छटके में। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज भाई स्पॉटलाइट आप पर ही हो सकती है, लीडरशिप दिखाने का मौका भी मिलेगा। बस ईगो को थोड़ा साइड में रखना है और सब कुछ स्मूथली चलेगा। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: हर चीज परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, कभी कभी डन इज बेटर देन परफेक्ट। आज का दिन प्रोडक्टिविटी के नाम रहेगा। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 8।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: कहते हैं भाई बैलेंस इज द की टू सक्सेस, एंड आज बैलेंस ही आज का मैजिक वर्ड है फॉर यू। रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी। स्माइल करते रहिए। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखिए, आज कोई सरप्राइज अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो फ्यूचर में फायदेमंद रहेगा। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 4।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: एडवेंचर का मूड है, चाहे छोटा सा आउटिंग हो या फिर नई हॉबी, आज कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए। पॉजिटिव वाइब्स साथ रहेगी। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: हर वर्क का रिवॉर्ड धीरे धीरे मिल रहा है, आज थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा और अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट भी कीजिए। लकी कलर आपका है ग्रे और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: क्रिएटिव आइडियाज की बारिश हो सकती है, जो विचारे काफी टाइम से दिमाग में है उस पर एक्शन लेने का दिन है आज, तो एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: इमोशंस को समझिए, उनसे भागिए मत। आज स्पिरिचुअली मेडिटेशन या फिर म्यूजिक आपको इनर पीस दे सकता है। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Chillax with Radio Musty,
1: your number one Bollywood radio station.
2: 5:55 हुए हैं, गुड मॉर्निंग।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्षिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। 5 जुलाई 2026 की प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम फीफा वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बाप्पे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा और अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। याद रखें कि मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में समेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। बजट 2026-2027 पर इबेन साइबर सिटी में युवाओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन किया गया। युवाओं ने रोजगार, कार्य के अवसर और क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी। बजट 2026-2027 पर आए जिस संवाद इस संवाद सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर विशेष चर्चा भी हुई। सरकार ने कहा कि AI को रोजगार के खतरे की बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और मॉरिशस इसे क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है। भारत और मॉरिशस ने रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के नेता पॉल बेरांजे ने फाइनेंस बिल 2026-2027 को आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नुकसानदायक बताया है। उन्होंने सरकार पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की चेतावनी दी है। और आज 5 जुलाई को क्यूपिप के सेंट थेरेज गिरजाघर में तीसरी मैस डिजॉर्टिस का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और समाज में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई दी जा रही है। तेहरान में फिलहाल उमड़ा हुआ है जन सैलाब और उधर यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल और नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti।
1: मौसम का हाल आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा और रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। पर दोपहर बाद सिवाय उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिराएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब होगी और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण ठंड हवा का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी। और सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर। इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रौनक आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Mustique।

0: Chillax, Chillax, Chillax with Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.
2: हालात तो जैसे भी हो आप साथ हो तो किस बात का दर्द. गुड मॉर्निंग, 6:11 हुए और आपकी नेक्स्ट हो चुकी है RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Well, समय यही है दस्तूर भी आरम टू रेडियो मस्ती के साथ आप सक्सेसफुली जुड़ गए हो. इस नमनी टू मोर आवर्स टू गो. आशा है कि आप ठीक से सो पाए. अगर नहीं, वीकेंड है, संडे का दिन है, आराम से मस्ती से आप चल करो अपने ही चिलैक्स शो में. एंड नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं आपके नाम और जो अभी जुड़े हुए हैं आरम टू रेडियो मस्ती के साथ.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड.

Well, कुछ खास तो जरूर है क्योंकि आप जो कनेक्टेड हुए हो हमारे साथ आरएनटू रेडियो मासी के साथ। आपको बता देते हैं कि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार, तो यही पर लेटेस्ट न्यूज के लिए जो रहिए। अभी के लिए एंजॉय करते हैं म्यूजिक को साथ में।

चलिए सुबह के ठीक 6:30 हैं। बजट 2026-2027 पर इबैन साइबर सिटी में युवाओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन किया गया। युवाओं के रोजगार, करियर के अवसर और क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है। भारत

0: मॉरिशस ने रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। कौमीता प्रोग्रेसिस के नेता पुल बेरोंजे ने फाइनेंस बिल 2026-2027 को आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नुकसानदायक बताया है। उन्होंने सरकार पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की चेतावनी दी। आज 5 जुलाई को क्यूबिप के सेंट तेरेस गिरजाघर में तीसरे मैस दिजोचिस का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और समाज में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई, तेहरान में फिलहाल उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, 5 जुलाई रविवार का दिन, इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। अब हम सुर्खियों का विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। बजट 2026-2027 को लेकर कल इबेन साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी, फैब्रिस डाविड तथा सांसद काविराज रूपनी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे। इस पर चंद नौजवानों, विशेषकर अदनान सुबाची, निहाल गदा और नाओमी अली विंग को सुनते हैं।
1: नौजवान होने की हैसियत से हम मॉरिशस में अपनी अहमियत महसूस करना चाहते हैं। ख्वाह छात्र हो या नया कर्मचारी हो, हम प्राथमिकता की मांग नहीं बल्कि महत्व चाहते हैं। मेरी यही उम्मीद थी कि हमारा बेहतर प्रतिनिधित्व हो, हमें ये दिखे कि हमारे लिए क्या क्या किया जा रहा है, ताकि हमें भरोसा मिले कि हम देश में ही रहें। हम अपने देश में अहमियत पाना चाहते हैं।
2: Nous vivons à l'université, nous pas travail et nous besoin, comment dire, nous manquons parents qui faisaient subvenir à nos besoins.
0: बजट 2026-2027 को लेकर आयोजित इस संवादात्मक सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका रहा। ये सवाल भी उठाया गया कि क्या एआई रोजगार के लिए खतरा बन सकता है। इस पर वित्त मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी ने कहा कि जोखिम को अवसर में बदलना जरूरी है। उनके अनुसार मॉरिशस के पास ये अवसर है कि वह अफ्रीका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े वितरण और सेवाओं के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय हब के रूप में स्थापित हो। उन्होंने कहा कि ये तकनीकी क्रांति देश के लिए विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकती है। जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी को सुनते हैं, विवरण सुमेरा अकबरिन का है।
1: अगर हम सिर्फ मॉरिशस तक सीमित रहेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत खतरे हैं। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मॉरिशस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जगह बना ली है। अफ्रीका में मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सप्लाई केंद्र बन गया है। मेरी राय है कि अगर मॉरिशस अफ्रीका के साथ चले, अगर हम IA का केंद्र बनेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा।
0: पिछले जून में जिनीवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान मॉरिशस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर अधिक समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री गिज़ाउद्दीन ने रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता भी रेखांकित की। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट, विवरण सुमेरा अकबर अली का है।
1: श्रम मंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है और नौ

0: नौकरी के तरीके को बदल रही हैं। कर्मचारियों और मालिकों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 114वें सत्र के दौरान श्रम और औद्योगिक संबंध मंत्री रिजाउ टीम ने कामगारों के प्रशिक्षण और उनकी काबिलियतों को निखारने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वे श्रम मंदी की नई हकीकतों में बेहतर तरीके से ढल सके। मंत्री रिजाउ टीम ने सामाजिक डायलॉग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया, ताकि नौकरी के माहौल से जुड़ी डिजिटल चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरक्की को समझा जा सके। इस सम्मेलन के दौरान श्रम मंत्री ने भारतीय राज्य श्रम मंत्री शोभा करण लजे से भी मुलाकात की। मॉरीशस और भारत के बीच श्रम, पेशवराना प्रशिक्षण, काबिलियतों के विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई। मॉरीशस ने भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ई श्रम और नेशनल कैरियर सर्विस में दिलचस्पी जाहिर की। भारत ने फिर से पुष्टि की कि वो मॉरीशस के साथ अपनी डिजिटल महारत बांटने के लिए कटिबद्ध है।
1: फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्यमियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये दावा फोमी लीतों प्रोग्रेसिस के नेता पोल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया। उनका कहना है कि मॉरीशस स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग और वर्क एक्ट को इस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उनको सुनते हैं।
2: पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर बुरबेहोंजी ने कहा कि प्रस्तावित प्रणाली में अनिश्चितताएं हैं। उन्होंने फाइनेंस बिल के परीक्षण के लिए गठित मंत्रालय समिति पर चर्चा की। अब जाकर नवीन रामगुलाम एक मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कम से कम संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशन फाइनेंस बिल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले बजट कदम प्रस्तावित करें और बाद में समय लेकर चर्चाओं के बाद पेंशन सुधार लाएं। मींस टेस्ट हटाए जाने के संबंध में पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण बाकी है। सिर्फ मींस टेस्ट समस्या नहीं, 60 से 65 साल के बीच और उसके बाद भी कैसे पेंशन निर्धारित होगा। राजनीति को लेकर बुरबेहोंजी ने फोर मिलिटों प्रोग्रेसिव के भविष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि ये दल ज्यादा तेजी से हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे कई गैर संसदीय संगठनों के साथ संपर्क में हैं।
1: रिपाई आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए कार्य मंदिर अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और यज्ञ का भी आयोजन किया गया।
3: यहां पर यज्ञ, महायज्ञ, बहुत सी ऐसी गतिविधियां करेंगे क्योंकि सभी वर्ग के लोग के इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में अवगत करना। इन सब बातों के लिए हमने इस आर्य मंदिर का निर्माण किया।
1: तीसरे मेस डिजोचिस का आयोजन आज 5 जुलाई सुबह 11 बजे क्यूपिप स्थित पावास सेंटेरेस में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट लुइस जोसेस और यूनियन ऑफ ऑटिस के सहयोग से किया जा रहा है। इस विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता मोनसिनियर जो मिकाएल जोन करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के साथ साथ वे सभी लोग शामिल होंगे जो मॉरीशस के समाज में कलाकारों के योगदान को सम्मान देना चाहती हैं। 2024 में शुरू की गई मेस डिजोचिस पहल का उद्देश्य चर्च और सांस्कृतिक जगत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।

यह आयोजन समाज में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ आपसी भाईचारे और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। फ्रांस के लोकप्रिय गायक क्रिस्टोफर माए अपनी अंतर्राष्ट्रीय संगीत यात्रा के तहत एक बार फिर मॉरिशस आ रही हैं। सिटाडेल में अपने पहले कंसर्ट के लगभग 20 साल बाद वे 21 फरवरी 2027 को ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर में मंच पर प्रस्तुति देंगे। क्रिस्टोफर माए अपने चर्चित गीत ओ सताश जे लेसे लोर्स बुके दे रोज और लोम्पेदुसा के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। कंसर्ट की टिकट ₹900 से शुरू होती है और उतायु के माध्यम से उपलब्ध किए जा सकती है। अब बात करें फुटबॉल विश्व कप के बारे में, यानी फीफा विश्व कप 2026 के बारे में। राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा है और अब पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में सह मेजबान कनाडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है और अब राउंड ऑफ 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित हैं, आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड होगा कल सुबह 4 बजे और कल रात 11 बजे पोर्चुगल खेलेगा स्पेन के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सुर्खियों में हम बात कर रहे थे कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार की औपचारिक शुरुआत कल तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में हुई। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग वहां पहुंचे। आज धार्मिक और राजनीतिक महत्व वाले पवित्र स्थल पर विशेष नमाज अदा की जाएगी। 6 दिनों तक चलने वाले इन अंतिम संस्कार समारोहों के आयोजकों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आज की नमाज का नेतृत्व कोई वरिष्ठ धार्मिक नेता करेगा या खामेनेई के परिवार का कोई सदस्य। इस बीच अली खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा खामेनेई भी उस हमले में घायल हुए थे। फिलहाल वे केवल अपने नाम से जारी आधिकारिक बयानों के माध्यम से ही संदेश दे रही है। और उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने स्वीकार किया है कि शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ और तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उनके अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा और दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दोपहर बाद उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिराएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, यानी सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे इलाके

पर ठंड हवा का असर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी नोट की जाएगी। आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर।

Shoksama Chasunye, Avenue des Alouettes, Morcellement Sudna, Katchabonme, Avenue des Alouettes, Morcellement Sudna, Katchabonme, Tirasi Salaki, 83 years old, she deunat, Sunatan, she deunat, Sunatan, she named Pai Suresh Kinam Siblozata Chantiti, Kimrit Hugi, Heun Kerti, Aj Daibajun, Kipatni, Shimati, Indurani, Sunatan Kigher, Morcellement Sudna, Katchabon Sutakar, and Tim Sanskar Kili, Gandhi Palma, Shamshan Bumi Lija Jagi, cremation today, 2:30 PM. Tagole la Florame, 44 साल की, 44 years old की, श्री शक्ति मधु, जिन्हें शक्ति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो देवानंद मधु की बेटी थी, की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 11:45 पर उनकी पत्नी श्रीमती काजल मधु के घर लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौवाक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:45 AM। सेंट हिलेयर सांगोलेट में 63 साल के शुभ समाचार एक बार फिर सुन लेती हैं। रॉयल रोड रिविया दिगाली में 55 साल के 55 years old के श्री संजय आपादू जी अंजीतन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 PM उनके घर रिविया दिगाली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। पुतिश्वमे बेले रिविया सेश में 66 साल के 66 years old के श्री सिवन चिरा सिंह श्री सिवन चितलाई सिंह जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज बाद में उठाई जाएगी उनके भाई कृष्णा चितलाई सिंह के घर से। रायरोड पुची रिविया में ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। Cour Avenue Victoria, Quatre Bonnes Mai, 61 साल की 61 years old की श्री लता चतुर सिंह पैदाश नाम बोयरो, जिन्हें लता के नाम से भी ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:15 पर ला शपेल ऑदन दे मुरा पिटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 15:15 PM। नारद रोड पुतिरा फ्रेमे 61 साल के 61 years old के श्री हेमराज दशरथ ने विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 PM उनके बेटे संदीप दशरथ के घर पुतिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पुतिराफे की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सिबालक लेन वाकुआ में 70 साल के 70 years old के श्री रोहित बहादुर जिन्हें राधेव मौसा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। कालीमाई रोड रिविया जोरोपो में 19 साल के 19 years old के श्री अजागेन रंगासामी जिन्हें अविसन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनके पिता सिवेन रंगासामी के घर से बाद में उठाई जाएगी। क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स। मोसल मोरामफल बुआमोंग प्लेंडी पापाई में 70 साल के 70 years old के श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद जिन्हें आनुस के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 PM उनके घर बुआमोंग प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। बंगाली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 years old की श्रीमती बिदवंती मितन जिन्हें माला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 PM उनके घर बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैपिया बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। जानकी रोड पुथोदो

विलाज में, जानकी रोड पुथोदो विलाज में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृहस्पति राम जिन्हें सत्या के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी बेटी सीता जुमक के घर पुथोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 10 AM। एवेन्यू जीवनाराइन पाल्मा कैटरबोन में 59 ईयर्स ओल्ड की श्री सूर्यदत्त लखन जिन्हें अशोक औपौत्या के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती पूनम लखन के घर पाल्मा कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। सिमिचिया रोड ब्लेन मान्यो में 36 साल की 36 ईयर्स ओल्ड की श्री वितीश बुदन जिन्हें निश्लय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सोमवार को शाम 4:30 बजे उनकी माँ संध्या गापू जी के घर प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 4:30 PM। कैमेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट सबले में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमालंगादी पाम्बेन जिन्हें रामास्वामी के नाम से लोग पैराशी राम रामास्वामी और जिन्हें विनोदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे मुगा पिछित रविये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाली देपात की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। नोवेल फ्रांस विलेज होल के पास सवान रो नोवेल फ्रांस में 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोमा देवी भोला पैदाशी नाम तिलक और जिन्हें सोमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9। हॉलीवुड नंबर एक वाकुआ में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गुरुदत्त दूधी जिन्हें मनन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई सुनील दूधी के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल वाकुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रुद पाल्मा कैटरबोन में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड की श्री दिविज अबनाराम जिन्हें दिविज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके पिता बड़ी अबनाराम के घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Chillax with Radio Musty.
1: संडे की सुबह है, अलार्म से नहीं आराम से उठने का दिन है। इट्स नर्मनी और इस आखिरी आओ में हम करेंगे फुल चिलैक्स, जहां टेंशन को देंगे ब्रेक और म्यूजिक को करेंगे प्ले। तो चाय या कॉफी ले लीजिए, बालकनी हो या बेड, बस स्माइल के साथ इस संडे मॉर्निंग को बनाते हैं और भी खूबसूरत। अगर रात का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली विल गेट ओवर इट। आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ में ही

Well, आज का दिन कोई रेस का नहीं है. अगर आज आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट सिर्फ इतनी है कि आप लेट तक आराम किया आपने, तो कंग्रेचुलेशंस जी. संडे इसलिए तो होता है रिचार्ज होने के लिए, और रिचार्ज का बेस्ट पार्टनर होता है गुड म्यूजिक. लेकिन अगर अभी आप काम पर जा रहे हो तो विश करते हैं आपको वो को आज

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, अभी के लिए latest sports updates आपके लिए. Good morning, Vikash जी.
4: Good morning, Nirmani. And a very good morning to all sports fans. ये football बोलता है. जैसे अनुभव यानी एक्सपीरियंस के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है. फीफा विश्व कप ने कल रात और आज सुबह फिर अपना तेवर दिखाया और उम्मीद के मुताबिक फ्रांस और मोरक्को पहुंच गए क्वार्टर फाइनल राउंड में. दोनों को हार्दिक बधाई. सबसे पहले फ्रांस 1-0, जहां मैच से पहले लगने लगा था कि एक आसान मैच होगा इक्विप डिफेंस के लिए, वहीं पर फर्स्ट हाफ में पराग्वे ने फ्रांस को मुर्गा बना के रखा. पूरे फर्स्ट हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं रहा फ्रांस की ओर से. पराग्वे ने फ्रांस का

खेल बिगाड़ना चाहा, लेकिन सेकंड हाफ में खेल के दूसरे भाग में देसीरे ड्यूए के मैदान पे उतरने पर ही दबाव, फिर उसने पराग्वे ने उसे डिफेंस ने गिराया और पेनाल्टी पर 70th मिनट पर किलियान एम्बापे ने वर्तमान वर्ल्ड कप में अपना 7वां गोल स्कोर किया। पेनाल्टी पर 7 गोल इस वर्तमान वर्ल्ड कप में। लियोनेल मेसी ने भी इतने ही गोल स्कोर किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर एम्बापे ने 19 मैचों में 19 वर्ल्ड कप गोल स्कोर किए हैं, मेसी से एक कम। मेसी ने अब तक 20 वर्ल्ड कप गोल स्कोर किए हैं, ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर। पर पिक्चर अभी बाकी है, एम्बापे केवल 27 साल का है, उसके सामने कम से कम एक और वर्ल्ड कप तो है या फिर 2 विश्व कप भी हो सकते हैं। सो हार्दिक बधाई फ्रांस को, जिसने पराग्वे को 1-0 से परास्त किया। और फ्रांस का मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से है, जिसने कल कनाडा को, कोहोस्ट कंट्री मेजबान देश कनाडा को 3-0 से तोड़ा। ये मैच भी एक अलग तरीके से आरंभ हुआ, कनाडा हावी हो गया था, कनाडा का खेल अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगा था कनाडा, लेकिन अनुभव काम आता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहते हैं। और मोरक्को ने संभल कर खेला, सेकंड हाफ में कमाल का परफॉर्मेंस मोरक्कन टीम की ओर से। उनाही ने बैक टू बैक 2 गोल स्कोर किए, यानी 50वें और 82वें पर 2-0 से मोरक्को आगे। और आखिर में इंजुरी टाइम में भी जाकर रहीमी ने कोई रहम नहीं दिखाया और 98th मिनट पर तीसरा गोल स्कोर करके मोरक्को को 3-0 से जितवाया। ब्राहिम जियाज का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 2 डिसाइसिव पासेज, अशरफ हकीमी का क्या कहना, कभी डिफेंस में कभी अटैक में चहुओर मैदान पे छाया रहा। मोरक्को 3 कनाडा 0। अब क्वार्टर फाइनल में इसी गुरुवार की रात 12 बजे मध्य रात्रि को फ्रांस वर्सेस मोरक्को। मोरक्को अभी अपने 34 मैचों में अनबीटन है। सो अनबीटन इन 34 मैचेस, मोरक्को को हार्दिक बधाई। माने न माने वो विश्व कप जीत सकता है, किंतु सामने है एक ढीठ और बहुत ही मजबूत इकिप डिफेंस, जो 1-1 मोरक्को से कहना पड़ेगा बेहतर है, किंतु हर मैच की अपनी हकीकत होती है, अपनी रियलिटी होती है। धैर्य, स्ट्रैटेजी और जज्बा हो तो बड़े बड़ों का पत्ता कट सकता है। फ्रांस वर्सेस मोरक्को साल 2022 कैटर 2022 के सेमीफाइनल का रीमेक होगा या कुछ और, देखते रहिए और सुनते रहिए। सो अब आज रात 12 बजे किसके 12 बजेंगे, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, अर्लिंग हैलैंड इधर से उधर, लासेलिसाओ का पूरा स्क्वाड। ब्राज़ील का मुकाबला आज रात 12 बजे नॉर्वे से है। और कल सुबह 4 बजे, भूलेगा नहीं, इट्स मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, गर्मा गर्म मैच। सवेरे वाले गाड़ी से उठ खड़ा होना है, इंग्लैंड को चाहिए आपका सपोर्ट, क्योंकि मेक्सिको के लिए तो भरपूर सपोर्ट है अज़्तेका स्टेडियम में। और यदि समाचारों को माना जाए तो मेक्सिको के हजारों फैंस इंग्लैंड के होटल के सामने रात भर, दिन में भी, शाम तक, यानी सुबह शाम रात दिन खड़े हैं और शोर मचाने लगे हैं। उनको नींद ताकि न आए और चाहिए आराम इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड का कहना है कि वे इन सब से नहीं डरते हैं, इंग्लैंड मेक्सिको से नहीं डरेगा। हालांकि अज़्तेका स्टेडियम में हल्ला गुल्ला मचेगा, किंतु शोर शराबे से फुटबॉल नहीं खेला जाता, संयम, नियम और संगम से आसमान को भी जमीन पे लाया जा सकता है। सो इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको कल सुबह 4 बजे, और कल रात 11 बजे इज गोइंग टू बी पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। बात करें अब क्रिकेट की, इंग्लैंड ने कल भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में 4 विकेट से परास्त किया। इंडिया ने जब अपनी पारी में 190 रन बनाए 6 विकेट गंवाकर, वैभव सूर्यवंशी ने अपना पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला इंडिया के साथ। 14 रन वो बना पाया, जिनमें 2 छक्के भी रहे। ईशान किशन के सर्वाधिक रन रहे 49, लेकिन जवाब के तौर पर इंग्लैंड की टीम ने
शुरुआत में दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाई, केवल 5 रन देकर 2 विकेट थे डाउन।

0: फिर बाद में संभल कर बेथेल ने 76 रन बनाए 76 नॉट आउट और इंग्लैंड की टीम 4 विकेट से ये मैच जीत गई। अगला मैच तीसरा T20 मैच इसी मंगलवार को खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज में। टेनिस में बात करें तो टेनिस में आजकल विंबलडन टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें बड़े बड़ों की हार भी हो रही है और हार और जीत तो होती रहती है। कल इगा स्वियातेक की भी हार हुई, डिफेंडिंग चैंपियन इगा स्वियातेक हार गई। आज नोवाक जोकोविच अनुभवी खिलाड़ी 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूसी खिलाड़ी सियाफुलिन से है। सो ये मैच आज खेले जाएंगे। विंबलडन के बाकी जो मैच हैं आज के लिए इस प्रकार हैं, रोमान सियाफुलिन वर्सेस नोवाक जोकोविच, अरीना सबेलेंका खेलेगी नाओमी ओसाका के विरुद्ध, यानिक सिने का मुकाबला शिंटारो मोचिजुकी से है, जबकि जेसिका पेगुला खेलेगी इवा जोविच के विरुद्ध। बता दें कि कल के कैजुअल्टीज में कल इगा स्वियातेक की हार हुई, अलेक्जेंड्रा इयाला ने उसे 7-6 और 6-2 से परास्त किया। मैडिसन कीज ने अनिसिमोवा अमांडा को आउट किया 6-3, 6-2 और 6-3 से। ग्रिगो डिमिट्रोव की जीत हुई। एलिज मैथन ने वर्ल्ड नंबर 2 एलेना रायबाकिना को हराया 7-6 और 6-1 से। और फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की ब्रिटिश ग्रैंड प्री रेस में आज किमी एंटोनेली पोल पोजीशन से रेस शुरू करेगा। कल की फाइनल स्प्रिंट में एंटोनेली ने पहला स्थान प्राप्त किया, जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर आया और लेविस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान लिया। आज ब्रिटेन में क्या लेविस हैमिल्टन अब एक और जीत हासिल कर पाएगा? फिलहाल किमी एंटोनेली अभी पहले स्थान पर है, वो 43 अंक आगे हैं जॉर्ज रसेल से। तीसरे स्थान पर है लेविस हैमिल्टन जो 4 अंक पीछे है जॉर्ज रसेल से। सो आज के मैच आज रात ब्राजील अपना मैच खेलेगा नॉर्वे के विरुद्ध आज रात 12 बजे, फिर कल सुबह 4 बजे मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, कल रात 11 बजे पोर्चुगल का मुकाबला स्पेन से। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Prix cassé l'eau la voix. La lumière moderne, prix

0: Chillax with Radio Masti.
1: एक छोटी सी बात है, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट होने का

वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, कभी कभी इन परफेक्ट मोमेंट्स ही सबसे परफेक्ट मेमोरीज बन जाते हैं। तो आज के लिए स्माइल ज्यादा, स्ट्रेस कम और हर पल को एंजॉय कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, कि सिरा सिरा। अब रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड।

0: तरह ना देखो हमको, अरे इसी गाने के साथ सजाए मुझे लाइफ उम्मीद है मनी जी से बाय। आशा है कि आपने खूब इंजॉय किया संडे मॉर्निंग को, फिर मिलेंगे जल्द ही, लेकिन आप आज हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल संडे विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: La FIFA World Cup 2026 chez McDonald's est officiellement lancée et elle arrive avec 6 gobelets de collection. Et quel line-up ! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Song Heung-min, sans oublier notre capitaine adoré, l'incontournable

8 बजे के समाचार में सब लोग की स्वागत कर ले जाता सब कोई की नमस्ते आप प्रणाम सबसे आगे हम नहीं बात कर अब जा बजट के बारे में जैसे आप लोगन की पता बाटी बजट 2026-2027 के लेके इबेन में कल साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के लयिका लोग युवा उद्यमी और नीति निर्माता लोग के बीच एगो संवाददात्मक सत्र के आयोजन भइल और एकर में ई अवसर रह जूनियर मिनिस्टर दनेश

0: Chuar Damriar, Fabrice David, Ar Ikarsangi Sansad Kaviraj Rukni Ji Mohjudran, Ulog Saval ki Jawab Dilanja. Pratibhagi Log Ka Rozgar Sri Jenar Karya ki Age Badhai ki Avsar Par, Ar Kray Shakti ki Me Sudhar, Ar Yuva Log Se Jura Dusar Mahatvapurna Mudda Par Apan Apeksha, Ar Sujhav Sidha उनकर आगे रखलन जा। बजट 2026-2027 पर आयोजित ई संवाद सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर विशेष चर्चा भी भइल। सरकार बोललक कि एआई के रोजगार के खतरा के बजाय एगो अवसर के रूप में देखे के चाही और मॉरिशस के क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित हो सकी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस समावेशी न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन में बदलता भारत और मॉरिशस रोजगार कौशल विकास सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग के मजबूत करे पर सहमति जतैली बाटी। राजनीति के स्तर पर फोर मिलिटों प्रोग्रेसिस के नेता पोल बेरांजे फाइनेंस बिल 2026-2027 के आम परिवार और छोटा मध्यम उद्योग खातिर नुकसानदायक बतैलन। उ बोलन कि सरकार सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दा पर जनता के गुमराह कर ली बाटे। ई उ आरोप लगैली हवन और ई भी बोलन कि देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की उ चेतावनी देवत हवन। और आज 5 जुलाई के क्यूपिप के सैंतीस गिरजाघर में तीसरका मेस्तेजाचिस के आयोजन करा जाता। ये विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न गोक्षेत्र के कलाकार शामिल होइन जा और समाज में उन लोग के योगदान के भी सम्मानित करल जाए। आप लोगन के याद दिला देवीला जा जे संगीत में दिलचस्पी रखेला त फ्रांसीसी गायक क्रिस्टोफर माये अपन अंतर्राष्ट्रीय संगीत यात्रा के तहत आवत बरी समोशस में अपन प्रस्तुति दी हन। उनकर बहुप्रीक्षित कंसर्ट जोन बाटे उ आवत बरिस के 21 फरवरी के महीना में होई एकर आयोजन त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में करल जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी ला जा हमनी थोड़ा सुन फुटबॉल के बारे में। जो फुटबॉल देख ले हवा तो जनब की काल जुन मैच खेलल गल फ्रांस और पाराग्वे के बीच। ई मैच के स्को रहल एक 3 यानी कि ला फ्रांस जो बाटे उ 3-1 बाटे ला फ्रांस जो बाटे उ 1 गोल दलक। आर ई रहल ओकर कप्तान किलियान एम्बापे जो हवन उ ई गोल दलन। आर मोरक्को जो बाटे उ कनाडा के खिलाफ खेलन आर उ 3-0 के स्को बनाए लगन। और ऐसा ये लोग फिनो से भेंट करी अंजा क्वार्टर फाइनल में आवद बीफे के। और जो मैच खेला जाए उमे ब्राजील और नॉर्वे जो बाटे वो आज रात 12 बजे खेली और कल फजीर के 4 बजे मेक्सिको खेली इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरा देश के समाचार में जो नबी सुर्खी में बाटे वो बा इस्लामी गणराज्य के प्रति जो सबसे वफादार बड़ा संख्या में ईरानी नागरिक देश के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार समारोह में पहले दिन तेहरान में एकत्र हुआ था। अंजा आयतुल्ला अली खामेनेई युद्ध के शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमला में उनकर मृत्यु हो गल रहल। आर ईरानी सरकार मीडिया के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़ा समारोह 6 दिन ले ईरान आर पड़ोसी इलाका के कई गो स्थान पर आयोजित कराल जाता। एक बाद बीफे के ओकर पैतृक शरीर मशहद में ओकर सुपुर्द खाक ओके करल जाए यानी कि ओके दफनावल जाए हुआ पर। तकरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। संगे रह अभी बढ़ब जा मरनी के समाचार देने।
1: RM2 Radio Mystique. The Time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
3: Radio Masti.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: Wishing you all a very good morning. Check your time. Subah ke 8:07 hue hain.

0: It's the Weather Broadcast with Winners.
1: On est tous winners.
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
4: मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का असर है अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा और रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। पर दोपहर बाद सिवाय उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिराएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब होगी और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण ठंड हवा का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी और सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
5: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points Weave.
6: On est tous Winners!
3: RM2.
2: Radio Musti.
3: Feel the Musti.
7: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
6: RM2
3: Radio Musti.
8: Krusty, on fait quoi aujourd'hui?
9: On va l'aventure!
8: À l'aventure?
9: Oui, Soso, à l'aventure du sucre!
10: Découvre l'histoire du sucre avec Soso et Krusty. En ce moment, dans ton Cheeky Fun Meal, un ticket enfant pour l'aventure du sucre t'est offert. Profites-en vite!
6: RM2
3: Radio Musti.
2: Timeless Tadka.
3: RM2
2: Timeless Tadka.
3: Hey!

0: Wellness तड़का
1: RM2
2: बजकर 17 मिनट हो गया है. आप सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. इट्स द बिगिनिंग ऑफ टाइम लिस्टर का और अभी के लिए शुरुआत हम करेंगे फॉर हैप्पी कोट ऑफ द डे. हम हैप्पीनेस के बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे. हैप्पीनेस इज नॉट अ समथिंग रेडी मेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस. कोट फ्रॉम दलाई लामा. एक छोटी सी रिमाइंडर है, खुशी मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक तरीका होता है. जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है. मुस्कुराकर उसका स्वागत आप करें. सुबह एक नई शुरुआत है और हर मुस्कान एक नई उम्मीद.
3: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.

0: Chris Thurgar.
1: RM2.
2: Welcome again on Radio Masti, and this is our timeless Tarka bringing you some good vibes. Rise and shine with great music on Radio Masti. यहाँ पर बिल्कुल हमारी मुलाकात रंग लाने वाली है और यहाँ आज संडे मॉर्निंग यहाँ हंसनी है जो आपके साथ देने वाली है एंड आई बी विद यू. ये जो शुरुआत है बिल्कुल अच्छी हुई है एंड रब से यही हम प्रार्थनाएं करेंगे कि जो भी होगा बस अच्छा ही होगा. आज एक नया संडे वाला दिन शुरू हो गया है. इट्स वीकेंड, संडे का दिन, और कई लोग आज घर पर रहेंगे, घर पर यानी कि फैमिली टाइम को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी सिंस मॉर्निंग, सुबह से बस काम जारी है. सबों को आज आप सभी को, आपको पता है ना, एनर्जी लेवल बस बढ़ ही जाता है. अगर मूड थोड़ा सा लो है या फिर एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, कोई बात नहीं, ये जो मैजिक है वो कर लेता है आप लोगों के लिए. कौन एक ही वन एंड ओनली रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो आपकी ज़िंदगी है वो बस और भी रंगीन हो जाए. क्योंकि हमारा ये मानना है अपने मुस्कान को अपनी ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से क्या होता है, हर मुश्किल आसान लगने लगती है. राइट, सो वी आर हियर टू रिक्रिएट द मॉर्निंग एम्बियंस विद आज का टाइम मिनिस्टर का. यहाँ पे हंसनी है जो आपके साथ है, और हाँ, टू सेलिब्रेट योर डे ये हम कैसे भूल सकते हैं, आज तो है ना 5th of July. कई लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सो वी आर हियर टू मेक इट फन. आई बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस और आपके डेडिकेशंस के लिए. कोई है खास और उनको आप बस कहना चाहेंगे कि वो कितना खास है, सो रेडियो मस्ती इज हियर उन सभी फीलिंग्स को बयां करने के लिए. लेट्स हैव इट फॉर नाउ. हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट स्टार्ट, हैप्पी संडे, हैप्पी वीकेंड, एंड हैव अ हैप्पी टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: Radio Masti ki team ke saath
3: chaliye
2: United States, Canada or Mexico.
3: Radio Masti ke saath
2: World Cup magazine.
4: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन. इस वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर तैयार है, वो होगा मोरक्को और फ्रांस के बीच. ये इसलिए क्योंकि मोरक्को अनबीटन इन 34 मैचेस इस कंपटीशन में, ऑल कंपटीशन में मोरक्को वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रबल चैलेंजर, सीरियस कंटेंडर बन गया है. को होस्ट कनाडा का वर्ल्ड कप का दी एंड मोरक्को के लिए केवल 5 एफर्ट्स, इनमें 3 गोल. As the cliche goes, the mark of a great team is that they know how to win ugly. Morocco ke fans keh rahe hain, rok sako to roko. France ke liye kathin match raha. First half mein ek bhi shot nahi, deadlock toota second half mein, wo bhi penalty par Kylian Mbappe ka goal. Is World Cup mein ye uska 7th goal hai, Messi se barabar. All time top scorer mein Messi 20, Mbappe 19. Ab Thursday ko फ्रांस वर्सेस मोरक्को आग ही आग. आज रात मिडनाइट किक ऑफ नॉर्वे और ब्राजील के बीच, और कल सुबह 4 बजे मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, और रात 11 बजे पोर्टुगल वर्सेस स्पेन. ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, गैब्रियल वर्सेस अलोन, राइवल

0: हाई प्रोफाइल फिजिकल बैटल होगा इन दोनों के बीच। इंजुरी क्राइसिस, ब्राजील के लिए राफिना, लुकास पकेटा दोनों नहीं खेल पाएंगे। अभी तक इन दोनों के बीच चार मैचों में ब्राजील ने नॉर्वे को एक बार भी नहीं हराया है। 1998 वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने ब्राजील को हराया था। इस बार ब्राजील फेवरेट है, पर जहां अर्लिंग अलोन है वहां डरना जरूरी है। मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, होस्ट टीम मेक्सिको ने इस वर्ल्ड कप में एक गोल भी कंसीड नहीं किया है। अज़्टेका स्टेडियम में खेलना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस मैच के लिए सबसे बड़ा खतरा मौसम है, सीवियर टोरेंशियल स्टॉर्म और फ्लड वार्निंग्स हैं। फीफा इसलिए इस मैच को पोस्टपोन करना चाहता था, पर इंग्लैंड और मेक्सिको नहीं माने। अल्टीट्यूड फैक्टर इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम, 7,220 फुट एलिवेशन ह्यूज डिसएडवांटेज, ऐसा खुद टोमस टुखेल ने स्वीकार किया। अभी से ही कई इंग्लैंड के खिलाड़ियों को माइनर अल्टीट्यूड हेडएक होने लगे हैं। तगड़ा मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, क्या होगा इस पर आपको बताएंगे जरूर। सो दैट वाज द वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: Definitely दिल का मामला है ना, तो कुछ कुछ हो जाता है. So we are here कि आपकी तरफ से कुछ बातें हम सुन लें. यहाँ पे हाचा कैसा है? वाली हो कि सब ठीक, अच्छी सी शुरुआत हो गई है और अच्छी नींद के बाद आप जागे हो. और आज कुछ लेट, आज नो काम ना, जो लोग आज काम पर नहीं जाएंगे, आज उन्होंने नहीं लगाया है अलार्म बटन, क्योंकि ऐसे ही वो जागेंगे आराम से, इत्मीनान से जाएंगे ब्रेड खरीदने के लिए. और संडे वाला जो ब्रेकफास्ट होता है, हम मॉरिशंस के लिए गातफीमा जुपैन एंड ऑल ये सब खरीदने के लिए जा रहे हैं. एंड आता हो के गरम गरम चाय कॉफ़ी को एंजॉय किया जाएगा परिवार के साथ. लेट्स मेक इट फन. और टू एड ऑन सम ग्रेट म्यूजिक, आपको पता है आपका जो हम सफर है ना, रेडियो मस्ती ऑलवेज एंड फॉरएवर आपके साथ. एंड आज के लिए और जो हंसनी है एंड सेटिंग द मोड फॉर आज का टाइमलेस सेटर का. एंड वैसे कई लोग जो यहाँ पर काफ़ी कुछ लो फील हो रही हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा लाइन. कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने कि एक छोटी सी बात, लेकिन उनका बहुत बड़ा असर होता है हमारे ज़िंदगी में. ऐसा होता है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मजबूत वो ही होता है जो हर गिरावट के बाद फिर से उठने का साहस रखता है. मुश्किलें आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाने आती है. इसीलिए वो आती है, वरना नहीं आएगी. जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपकी हार नहीं होती है. अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई पता है क्या होती है? सबसे कठिन लड़ाइयाँ सबसे मजबूत इंसानों को ही मिलती है. सो वी आर हियर टू मेक यू हैप्पी, टू मेक यू फील स्ट्रांग. अगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, कोई बात नहीं, जिंदगी है ना, वो हर पल सब कुछ सिखा देती है. और आपको है पता कि हमारा जो टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम और रेडियो मस्ती, यहाँ पर ऑलवेज हियर हौसला को बुलंद रखने के लिए. सो चलिए यहाँ पर गानों के साथ, वी आर हियर टू फिट दिस म्यूजिकल शो आपके इस दिन को और भी मत मस्त बनाने के लिए. लेट्स गो फॉर इट.

0: 9:01 हो गया है अभी के लिए. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ. आपको नमस्कार अर्शिता.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कार्य क्षेत्र में तेजी हो रही बदलावों के बीच मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है. जनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री गिजाउद्दीन ने कहा कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ताकि कोई भी श्रमिक पीछे न रह जाए. उन्होंने डिजिटल असमानताओं को कम करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले कार्यों के लिए प्रभावी नियम बनाने तथा सामाजिक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और सशक्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया. फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ये दावा फो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के नेता पॉल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया. उनका कहना है कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग और वॉक्स एक्ट को इस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए. बजट 2026-2027 को लेकर कल इबेन साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया. इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी, फाब्रिस दावित तथा सांसद काव्यराज रुक्नी मौजूद रहे. प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं. यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है. वहीं सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेग्लोव ने स्वीकार किया है कि शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ है और तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है. हालांकि उनके अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं. कीव का दावा है कि इन हमलों से रूस की लगभग 43% तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Express तड़का
1: RM2
2: एकदम ताजा हवा सम फ्रेश एयर हम लेकर आ रहे हैं ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती द्वारा ताजा हवा जो है बिल्कुल बहुत ही जरूरी है जब मन और हम खुद थक जाए ना तो ताजी हवाओं में कुछ पल बिता लीजिए सुकून अपने आप मिल जाएगा ताजा हवा की हर सांस जीवन में एक लेट्स से सम न्यू एनर्जी लेकर आते हैं सुबह की ताज़ी हवाओं के साथ मन को सुकून और दिल को ज़रूर एक नई शुरुआत का एहसास देती है सो वी आर हियर ऑफ कोर्स टू मेक इट अ हैप्पी संडे राइज एंड शाइन जैसा फील है और शाइन तो हो जाएंगे हमारे सपने मे बी कुछ देखे हुए सपने जो बिल्कुल साकार होने वाले हैं यू नेवर नो कब ये शुरुआत हो जाए ये तो ऊपर वाला है ना वो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं और अगर है कोई टेंशन है कोई स्ट्रेस आंसू तकलीफ तो उन्हीं पर छोड़ते हैं यहाँ पर जिन घड़ियों में हम हंसेंगे खुश रहेंगे अपनों के साथ वक्त बिताएंगे तो उन घड़ियों को क्यों बर्बाद करेंगे आज इट्स नो आज तो हम सिर्फ खुशियाँ बांटेंगे विश द हैप्पीनेस सम गुड वाइब्स एंड थैंकिंग यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर सपोर्ट एंड लव रेडियो मस्ती के साथ आप जुड़े हुए हो ना और शुरुआत हो गई है द सेकंड आवर ऑफ आज का टाइमलेस तड़का यहाँ पर हंसनी है हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन रियली होप कि सब ठीक एंड यहाँ पे कोशिश मैं ज़रूर करूँगी टू ब्रिंग ओनली द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ताकि जो संडे है वो एकदम हैप्पी वाला हो जाए एंड टू ऐड ऑन आपकी कुछ बातें हाँ आपके मैसेजेस आ रही है ना सो वेलकमिंग यू अगर अभी आपने सुनना शुरू किया है कुछ कहना आप चाहेंगे सो इंतज़ार है ऑन अ 5 4 9 12 या 94 पर
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
2: The best of a timeless terka on Radio Masti. Thank you for joining in. यहाँ पर हम सभी हैं जो साथ हैं आज celebrating Sunday, celebrating this lovely weekend. तो अभी time है कुछ messages हम पढ़ें. Of course पढ़ लेते हैं आपके साथ साथ. Namaste to everyone. Shweta यहाँ पर आई है. Hello Shweta. Good morning to you. एक nice सगाना जो चल जाएगा of course पति रोशन के लिए और आप और रानी. Loving him so much. सभी हुकुम परिवार के लिए भी we're gonna have a special गाना. Good morning everyone. Good morning to Neema. Neema Jibban जो मोदालबे से आई है.

आज पापा का जन्मदिन है. विशिंग योर डियर बेस्ट पापा हैप्पी बर्थडे फ्रॉम वाइफ ज्योति और सभी परिवार है, सभी टीम ही है यहाँ पर आपके पापा को विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे. Next one for daughter Avni, pati Roshan, yahan par aap ho Manisha. Thank you for listening and appreciating Timeless Tadka. Yehi gana jayega for Kiran and Nandita ke liye, jo two besties hai aur ja rahi hai Ganga Talab. Aur aapne socha hai agar naam aayega on radio, so that will be fun. Okay, ji, besties, have fun and have a pious yatra. Har har Mahadev aap dono ko. और यहाँ पे केवेश लिसनिंग टू RMT रेडियो मस्ती. थैंक यू केवेश, वेलकम टू यू, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग. आज मेरे यार की शादी है. अच्छा, ये तो खुशी मनाने का दिन आया है. धूमधाम से मनाएंगे शादी को. विक्षय के साथ शादी, नंदिता और केवेश आप गाड़ी को तैयार कर रहे हो डेकोरेशंस लगा के, और एक बजे शादी होने वाली है. एंड विक्षय अनंदिता को आप देना चाहेंगे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस, ताकि जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है ना, वो उसमें सिर्फ खुशियाँ उनको मिले. गॉड ब्लेस द न्यू कपल विक्षय अनंदिता एंड विशेस कमिंग फ्रॉम केवीश एंड ऑल योर कलीग्स जो आपकी कंपनी में काम करते हैं. सो एक गाना तो बनता है शादी में जाने के लिए. हम हैं तैयार.

0: US Tadka.
1: RM2.
2: और यहाँ पर बस शादियों के साथ हम भी तो गाएंगे, धूम मचाएंगे, हंगामा करेंगे. आफ्टर ऑल वी नीड दैट बहाना ना टू स्टे विद यू यहाँ पर साथ निभाने के लिए. एंड वैसे शादियों के साथ जन्मदिन भी मनाया जा रहा है. सो लेट मी विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू प्रवेश गुपुला जो रहते हैं दिब्रा रोड न्यू ग्रोव. आज आपका स्पेशल डेट है प्रवेश जी. Happy Bala Birthday aapko. Wishes coming from all the team of Radio Masti and from Hansini and sabhi jo aapke parivar hai aapko wish kar rahi hai very happy birthday. So yahan par dhoom machayenge bilkul. To agar aap bhi sun rahi ho aur aapke ghar mein koi hai khas jo apna hai aapka aur celebrate kar raha hai aaj aapka janmdin, so we are here to make it fun, to make it more special na, yaadgar banayenge. Aur messages to इस नंबर पर आप भेजिए 0549-1294. वी आर हियर टाइमलेस तड़का को लेकर विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. यहाँ पे हंसनी है जो आपका साथ निभा रही है एंड अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शन. तो इसके लिए बस आपको सुनते रहना है, साथ निभाते रहना है राइट हियर ऑन आवर रेडियो मस्ती.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

The best of time lister ka right on Radio Masti and of course hum to hai hi aapke saath to make it look wonderful. कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सम सिचुएशन ऐसे आते हैं, हालात ऐसे हो जाती हैं उनकी वजह से ज़िंदगी कुछ रुक से जाती है, थम से जाती है, ऐसा होता है ना, क्या करें, दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की यही सच्चाई है. कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, होते रहेंगे. और अचानक से क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि रफ्तार पकड़ लेती है, वही ज़िंदगी. सो एनी हाउ जो भी होता है आप बस हिम्मत ना हारना, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ज़िंदगी का जो असली खुशी होती है ना, दूसरों से तुलना करने में नहीं होता है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है.

उसी सिचुएशन में खुश रहना को खुश रहने के लिए बस हमको सीखना है. अगर हम जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल अवसर समझकर जिएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा. हाँ, ऐसा है कि कभी मुश्किलें आती हैं, सम ऑब्स्टेकल्स डू कम, लेकिन अगर डट से उनका मुकाबला हम कर लेंगे, हिम्मत ना हारेंगे, तो आसानी से हम उन सभी मुश्किलों को पार कर देंगे. राइट, सो सेंडिंग यू सम गुड वाइब्स ऑल अराउंड मॉरिशस एंड इवन अब्रॉड से भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं. अ बिग हेलो बोंजोर फ्रॉम मॉरिशस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस जॉइनिंग अस ऑन रेडियो मस्ती. दिस इज आवर टाइम लिस्टर का अप टिल 11 यहां पे हंसनी का साथ बिल्कुल ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट ऑफ सेवन इयर्स ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट ऑफ टाइमलेस टरका.

0: Talk Bollywood.
1: Radio Musti. That was a special one, Salman Khan and Urmila together. That was a Janam Samjha Karo. This is our radio station, Radio Musti, bringing you only the best. As always, ye hai Timeless Tirka ka ye show, jahan par aur jo hamsari hai, saath nibhati hui, bas hum chale aayenge aapke yahan, chahe jo bhi ho raha hai, bas to add on some more happiness, khushiyan ko bas hum lekar aayenge hamare gaano ke zariye. Hello Rishi ji, Rishi Bidesi ka warm welcome. Good morning to you, Bamboo se connected ho. एंड या यहाँ पर हंसरी है बिहाइंड द माइक. रियली होप कि बस सब कुछ ठीक है एंड सुबह से जो रॉकिंग गाने हैं आप एंजॉय कर रहे हो इस सनी संडे के लिए. दैट्स ग्रेट. विशिंग यू हैप्पी संडे ऋषि जी. और ये जो अगला गाना है स्पेशली हम ने चुना है आपकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए जो बॉम्बे से है. आई रियली होप कि बस गाने को सुनकर वो मान जाएगी. राइट, दिस इज़ अ स्पेशल फीलिंग आप दोनों के लिए. और बस यूं ही साथ निभाते रहिए. विशिंग यू बोथ अ वेरी नाइस वीकेंड.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Check your time, din ke 10 baje hain. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्षिता के साथ. आपको नमस्कार अर्षिता.
6: नमस्कार हंसिनी. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है सबका. गिपा आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए. इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया जहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ का आयोजन किया गया. तीसरे मेस्टिजोटिस का आयोजन आज 5 जुलाई सुबह 11 बजे क्यूपिप में स्थित पावा सेंट तेरेज में किया जाएगा. और इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट लुइस ज्यूसेस और यूनियन ऑफ ऑटिस के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है. इस विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता मोसिनियर जो मिकेल जो करेंगे. इस समय विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के साथ साथ वे सभी लोग शामिल होंगे जो मॉरिशस के समाज में कलाकारों के योगदान को सम्मान देना चाहती है. 2024 की शुरुआत में 2024 में शुरुआत की गई मेस्टिजोटिस पहल का उद्देश्य चर्च और सांस्कृतिक जगत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है. ये आयोजन समाज में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ आपसी भाईचारे और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है. फ्रांस के लोकप्रिय गायक क्रिस्टोफर माए अपनी अंतर्राष्ट्रीय संगीत यात्रा के तहत एक बार फिर मॉरिशस आ रहे हैं. सिटाडेल में अपने पहले कंसर्ट के लगभग 20 वर्ष बाद वे 21 फरवरी 2027 को ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर में मंच पर प्रस्तुति देंगे. क्रिस्टोफर माए अपने चर्चित गीत ओ सताश रेली से लोग सब बुके दो रोज और लॉम्बे जीसा के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं. कंसर्ट की टिकट 900 रुपये से शुरू होती हैं और उतायों के माध्यम से उपलब्ध की जा सकती हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं. यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है. हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं. कीव का दावा है कि इन हमलों से रूस की लगभग 43% तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. यूक्रेन का कहना है कि रूस के तेल और गैस प्रतिष्ठान वैध सैन्य लक्ष्य है क्योंकि रूस अपने युद्ध अभियान के लिए जीवाश्म ईंधन के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घरेलू ईंधन आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. और बात एक बार फिर करती हैं फीफा विश्व कप 2026 की राउंड ऑफ 16 मुकाबले में

0: फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा और अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। मोरक्को ने राउंड 16 में सस मेजबान कनाडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है। अब राउंड 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित हैं, आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ जो होगा कल सुबह 4 बजे और कल रात 11 बजे पुर्तगाल खेलेगा स्पेन के खिलाफ। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Timeless Tadka.
0: RM2.
3: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती फॉर आवर टाइमलेस तड़का. यहाँ पर है आपके साथ आरजे हंसनी एंड दैट वाज अ ग्रेट वेडिंग सॉन्ग ना यहाँ पे जो अभी चला. दैट वाज वेरी नाइस. जो शादी वाला फील है वो तो आ गया है ऑन रेडियो मस्ती. तो शादी रिलेटेड एक छोटा सा टिप फॉर ऑल माय स्वीट गर्ल्स एंड लेडीज जो आज शादी में जाने वाले हैं. और आज

0: यह आपका आउटफिट होने वाला है लहंगा सो लहंगे से जुड़े एक छोटा सा फैशन टिप लहंगा जो है ना चुनते समय बस अपनी बॉडी टाइप के अनुसार आपको ध्यान रखना है ताकि आपका लुक और भी आकर्षक लगे भारी लहंगे के साथ हल्की ज्वेलरी पहने तो अच्छा लगेगा दैट विल बी मोर लाइक ग्लैमरस और हल्के लहंगे के साथ अ बिट हैवी वाले ज्वेलरी अगर आप चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नाइस दिखेगा पर और लहंगा की जो लंबाई है ना उनके अनुसार हील से चुने ताकि आपका लुक और भी ग्रेसफुल और संतुलित दिखे ब्लाउज का जो डिज़ाइन है पूरे लुक को बदल सकता है सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो लहंगा पहन रही हो उसका ब्लाउज का जो डिज़ाइन है उस पर वो कैसा है ट्रेंडी नेकलाइन या फिर ऐसे आउटफिट को आप पसंद करेंगे जो आप पर खास बना सकते हैं लुक को आप पर सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द ब्लाउज उनका स्टाइल थोड़ा सा उन पर एक स्पेशल ध्यान आपको रखना है और दुपट्टे को लेकर दुपट्टे को अलग अलग स्टाइल में ड्रेप करके हर बार नया और स्टाइलिश लुक पाया जा सकता है ना कि एक ही स्टाइल में आप अपने ड्रेप को अपने पल्लू को ऐसे ही बांध लेंगे बल्कि यू कैन ट्राई अनदर स्टाइल मे बी आज जब आप जाएंगे तो एक नया लुक ड्रेप के साथ आप बस ऐड कर लीजिए एंड यू विल सी कि जो आपका स्टाइल है वो कुछ और ज्यादा ग्रेसफुल हो जाएगा ये था एक छोटा सा टिप
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, les 500 grammes agneau grillade Butcher's Choice sont à 304,80 €. Les Chicken Bites Sadia d'un kilo sont à 204,80 €.
0: RM2 Radio Musty.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन इन टाइमलेस सेटर का अभी के लिए वी हैव गॉट सम डेडिकेशन चलते हैं वाकवा वेलकमिंग राजश्री इन द शो हैप्पी संडे टू यू टू माय डियर थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मस्त रियली होप कि सब ठीक है तो आज है ग्रैंड मदर अनसुया का जन्मदिन विशिंग अनसुया जी हैप्पी बर्थडे वैसे कल था ओके बिलेटेड ही से ही लेकिन हम तो आए हैं उनको बधाइयाँ देने के लिए विशेज कमिंग फ्रॉम डॉटर उषा फ्रॉम दामाद जय ग्रैंड चिल्ड्रन राजश्री विशाल शालिनी अरविंद और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हिराज एंड चाविश्री साथ है सभी परिवार जो अनसुया जी को देंगे बधाइयाँ उनको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग हंसनी गुड मॉर्निंग नाइस सिलेक्शन गोइंग ऑन थैंक यू मौसम इन बेल्जियम में सुबह को 20 डिग्रीज और सनी भी एकदम नाइस मौसम है ऑसम तो यहाँ पर प्रकाश बती जी आए हैं टू शेयर द गुड वाइब्स इन मॉरिशस आपका वेलकम है ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम जो आप आए हो दूर ही सही लेकिन हमेशा वे डोमेस्टिक एकदम करीब चलते हैं बेल्वे मोगैल हेलो टू वीना जगीसा हैप्पी संडे टू यू परिवार को याद दोस्तों को याद और अगला गाना बेशक आप सबके लिए दीपा बंतू जो आए हैं प्रंदे गौश से आपका भी दिल से वेलकम है जी नेक्स्ट गाना पति बॉबी के लिए फॉर मामा सीता पापा देवन रति किशन विराज रेशमा ओजस्वी लविश और सचिन के लिए बस अगला गाना चल पड़ा है टू विश एवरीवन अ वंडरफुल वीकेंड
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

बजे से शुरू हुआ आपके साथ हंसनी जुड़ी थी ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पे इशारा है ठीक 11 बजे हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर और इसके बाद आएगी पूनम लेकर द नेक्स्ट शो दैट विल बी बॉली ब्रंच एंड इसके बाद आएगा लव लॉन्च प्रोग्राम। सो सुनते रहिए, हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट टाइम फॉर दिस वीकेंड। आई विश यू ऑल अ हैप्पी डे, टेक वेरी गुड केयर एंड स्टे सेफ।

Radio Mustang. So यहाँ पर चल पड़ा है द अंतिम गाना फॉर आज का टॉम लेस्टर का. बस वेली होप कि आपने पसंद किया है हमारा ये म्यूजिकल जर्नी जो सुबह

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बजट 2026-2027 को लेकर आयोजित एक संवादात्मक सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की भूमिका रहा। ये सवाल भी उठाया गया कि क्या AI रोजगार के लिए खतरा बन सकता है। इस पर वित्त मंत्रालय की जूनियर मिनिस्टर्स धनेश्वर दामोई ने कहा कि जोखिम को अवसर में बदलना जरूरी है। उनके अनुसार मॉरिशस के पास ये अवसर है कि वह अफ्रीका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े वितरण और सेवाओं के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय हब के रूप में स्थापित हों। उन्होंने कहा कि ये तकनीकी क्रांति देश के लिए विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकती है। बजट 2026-2027 को लेकर ही इवेंट में लगी इस संवादात्मक सत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी के साथ साथ फाब्रिस दावीद और सांसद कविराज हुकनी भी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे। फाइनेंस भी 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये दावा फोमिली तोफोगसिस के नेता पुल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया। उनका कहना है कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग एक्ट और वॉकर्स एक्ट को इस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों और विवादित मतगणना के बाद रूढ़िवादी उम्मीदवार केइको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित कर दिया गया है। पेरू में चुनाव अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से उनके निर्वाचन की पुष्टि करते हुए चुनाव परिणामों की घोषणा की। इस फैसले के साथ चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर फिलहाल विराम लग गया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, बढ़ते हैं एक शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड मोदालबे में 75 साल की 75 ईयर्स उनकी श्रीमती धनमुती बजन पैदाश नाम भगत और जिन्हें शांता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनकी बेटी मालिनी जवाहिया के घर मोदालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: लंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 11:09 हो चुके हैं और बाहर जो है वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, तो सोचा चलो मूड भी अच्छा बना लेते हैं बॉलीवुड के सुपरहिट गानों के साथ। जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, क्योंकि सुबह से हमारी पूरी टीम आपको लगी हुई है एंटरटेन करने के लिए। सुबह से 5 बजे से लेके अब तक, यानी कि 11 बजे तक अब मुझे जिम्मा दिया गया है आपको एंटरटेन करने का। तो चलिए भाई, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बहुत सारे गानों के साथ जुड़ जाते हैं। ये है आपका ही अपना बॉलीवुड शो, मैं हूँ आपके साथ पूनम। चलिए मस्ती और म्यूजिक के साथ शुरू करते हैं बॉली ब्रांच।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:21 हो चुके हैं दोस्तों, चलो आप जुड़े हुए हैं आप ही के प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और मस्ती का टाइम है भैया, ये जो टाइम है ना इसमें आलस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आलस को भगाने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे गाने बीच रखे हैं आपके लिए जिससे आपकी नींद तो भागे, आपको थोड़ी सी तंदुरुस्ती मिले और आपको लगे कि भैया थोड़ा सा बाहर निकलना है, छोटे छोटे से पेंडिंग काम सारे फिनिश करने हैं, तो ये टाइम सबसे बढ़िया है। चलो आपको एक प्यारी सी न्यूज़ देते हैं। आज है भैया, आज किसकी वेडिंग है? यस, आज वेडिंग है हमारे चार्मिंग एक्टर जिसे कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर आमिर खान की। जी हाँ, आज उनकी शादी है। कुछ ही लोगों को बुलाया गया है इस वेडिंग में, और मतलब थोड़े से सिलेक्टेड, जैसे कहते हैं कि सिर्फ परिवार के लोग आएंगे इस वेडिंग में, और बस उन्हें हम भी ये कहते हैं पूरी MBC की टीम की तरफ से और हम आप सब की तरफ से उनको विश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों सारी खुशियाँ रहें, और वो अपनी मैरिड लाइफ जो शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर उन्हें बहुत सारे खुशियाँ और सुख मिले। बस हम तो यही कहेंगे, बट हम आपको ये ज़रूर कहेंगे अगर आपको भी किसी को विश करना है तो आप हमें विश कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपना मैसेज भैया किसको विश करना है आपको, आपकी कोई भी डेडिकेशन है 5499124 पर। इंजॉय कीजिए आमिर खान का ये गाना, बहुत ही प्यारा था, दिल चाहता है मूवी से, इंजॉय कीजिएगा और अगर हो सके तो डांस भी कीजिएगा, उनकी शादी है भाई।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं ना म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वैसे तो किसी को ज़्यादा समझ नहीं आती। जो ज़्यादा डीप सोचते होंगे या जिनको पता होगा, जो टीचर्स प्रोफेसर्स होंगे म्यूजिक के, उनको लैंग्वेज पता होगी, भी बाकियों को नहीं पता। वैसे ही आजकल भैया स्पोर्ट्स की भी यही खूबसूरती है कि इनकी भी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट जब सेलिब्रेशन होता है तो सेम स्माइल होती है, सबके हाथों में ढोल होते हैं या जो भी चीज़ होती है, वो अगर कुछ भी ना हो तो डांस करने के लिए दो हाथ बहुत हैं, टांगें बहुत हैं, बस इसी से पता चल जाता है कि इंसान कितना खुश है। तो भाई आपकी टीम क्या कर रही है, आप जिसको भी पसंद करते हैं, आई डोंट नो किसको पसंद करते हैं, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है इस टाइम फीफा वर्ल्ड कप में, बट जो भी होगी कोई तो टीम होगी ना, उसके साथ में आप कितना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं ये तो आपको पता होगा। हमें भी बताइए 5499-1294 पर कि किसके साथ कौन फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। और साथ में हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं प्रिया, नीला, शोना, विकेश, पुष्करण, राहुल USA से, नवीन जी जो कि वाकवा से हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, ललित जी जो कि USA से हैं, अपने पूरे स्टाफ के साथ इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में डांस भी कर रहे हैं। कह रहे भैया 11 बजते हैं तो हमारा तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि गाने ऐसे होते हैं कि हमारा काम फटाफट होता है, चलो वही करते रहो ऐसे ही। यलिश जी हैं जो कि सूरीनाम से हैं और वो सबको यही कह रहे हैं, कॉफ़ी पियो या चाय, बात तो एक ही है बट रेडियो मस्ती होनी चाहिए साथ में और 11 बजे की, क्योंकि भाई मस्ती का टाइम है ना, यलिश ऐसे ही होता है। तो चलिए भाई आप सबकी तो हम मॉर्निंग बना रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारी भी मॉर्निंग बनाएं, हमें भी एक प्यारे प्यारे से मैसेज भेजिए और बताइए कि किसको कौन सपोर्ट कर रहा है। एंजॉय कीजिए आपके ये ब्यूटीफुल ट्रैक्स।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं बॉडी ब्रंच के साथ। और ये जो स्टाइल था ना, ये था हमारे किशोर दा का, और वो बहुत ही तरीके से करते थे क्योंकि सबका हंसाते थे, मुस्कुराने के लिए एक मौका देते थे, और साथ में वो उनकी जो पतली पतली सी टांगें होती थी वो डांस भी जब करते थे तो सबको अच्छा लगता था। और यही बात है बॉलीवुड की कि बॉलीवुड ने हर मूड पर गाना बनाया, चाहे किचन का गाना हो, चाहे खाने पर हो, चाहे रोने पर हो, चाहे धोने पर हो, चाहे खुश कराने में हो, तो बॉलीवुड हमारा हमेशा साथ देता है। तभी तो कहते हैं ना, जब भी हमारे को ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें मूड चेंज करना होता है, हमें याद आती है सिर्फ बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड तो है ही ऐसा कि जिसने हमें इतने सारे गाने दिए हैं और हमारे हर मौके पे हमारे साथ रहता है। इसी तरीके से रेडियो मस्ती भी आपके साथ हर समय, कहते हैं 24 आवर्स आपके साथ है। तो यही इस समय मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि जो लोग इस टाइम खाने की तैयारी कर रहे हैं या पका रहे हैं या खाने जाने वाले हैं, आप अपने खाने में सलाद ज़रूर रखें, वेजिटेबल ज़रूर रखें और साथ में दही ज़रूर रखें, और हो सके धूप का टाइम है थोड़ा सा लस्सी वस्सी पी लीजिए। क्योंकि लस्सी जो मतलब लस्सी को आपने कैसे बनाना है कि आपने दही लेना है और उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ये नहीं कि एक साथ दही में पानी मिला दिया और घुमा दिया और पी लिया, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसे घुमाते घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे हाथ से घुमाएंगे, और फिर आप देखिएगा कि वो हेल्थ जो आपकी बनाएगा ना, आपको तंदुरुस्ती देगा, आपको एनर्जी देगा। पर जब आप एकदम से डालते हैं और एकदम से पी लेते हैं, उसे हल्का सा घुमाते हैं,

0: उससे आपको थकान आती है, उससे आपको नींद आती है। तो लस्सी के भी दो स्टाइल है, उसमें हल्का सा नमक डालो, हल्की सी ब्लैक पेपर डालो, देखो मज़ा। यही है भाई, बॉलीवुड के गानों के साथ खाना भी चलता है। तो चलिए आपके साथ में हम गाने तो चला रहे हैं, पर आपको इतना ज़रूर बोलेंगे, बिल्कुल भूलिएगा मत, हमको मैसेज करते रहिए 5499124 पर।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti।

0: Tak, tak, Bollywood.
1: Radio must be

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. बजट 2026-2027 को लेकर आयोजित एक संवादात्मक सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका रहा. ये सवाल भी उठाया गया कि क्या AI रोजगार के लिए खतरा बन सकता है. इस पर वित्त मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामोही ने कहा कि जोखिम को अवसर में बदलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ये तकनीकी क्रांति देश के लिए विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकती है. बजट 2026-2027 को लेकर ही कल जो इबेन साइबर सिटी में संवादात्मक सत्र लगा, उसमें विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक सत्र आयोजित किया गया. इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामोही, फैब्रिस दाविद और सांसद कविराज रुकनी भी मौजूद रहे. प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे. पुल बेरांजे ने फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा किया है. ये दावा फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस के नेता पुल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया. उनका कहना है कि स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. पिछले जून में जिनीवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान मॉरिशस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर अधिक समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया. श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री रिजा उतीब ने रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता भी रेखांकित की. और बात करें अब फीफा विश्व कप 2026 की, राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा. अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा. मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में सह मेजबान कैनेडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया है. अब राउंड ऑफ 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित हैं, आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड होगा कल सुबह 4 बजे और कल रात 11 बजे पुर्तगाल खेलेगा स्पेन के खिलाफ. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संयुक्त राज्य अमरीका ने देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ आतिशबाजी, हवाई प्रदर्शनों और विभिन्न समारोहों के साथ मनाई. हालांकि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और खराब मौसम का असर भी देखने को मिला. वॉशिंगटन DC के नेशनल मॉल में आयोजित समारोह में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन ड्रीम वापस आ गया है. इसके बाद देश के इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शनों में से एक का आयोजन किया गया. 4 जुलाई का ये राष्ट्रीय अवकाश वर्ष 1776 में 13 अमरीकी उपनिवेशों द्वारा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है. इस बीच राजनीतिक रूप से विभाजित अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना भी हुई. उन पर 250वीं वर्षगांठ के समारोहों को अपने इर्द गिर्द केंद्रित करने और कांग्रेस द्वारा आयोजित आधिकारिक अमेरिका 250 कार्यक्रमों से अलग फ्रीडम 250 अभियान शुरू कर इस अवसर का राजनीतिकरण करने के आरोप लगाए गए हैं. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार.

0: petite rivière mais monte Tristan pesé. Pesette petite rivière mais tira si sale. Qui est de triazol qui chimati रईवंती तिलक जिन्हें दानों के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे दिलीप कुमार तिलक के घर मोंट ट्रिस्टन पेजेट पेटिट रिविएरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Love Lounge,
2: RM2,
1: Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:11 हो चुके हैं दोस्तों, बॉली ब्रंच में आपने डांस बीट के साथ खूब मस्ती की होगी और अब एनर्जी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं क्योंकि अब शुरू हो रहा है लव लाउंज। आप सबका वेलकम है जहां हर गानों में प्यार का एहसास छिपा होता है। मैं हूं आपके साथ पूनम, बनी रही आर एम टू रेडियो, मस्ती के साथ इंजॉय कीजिए आपका लव लाउंज प्रोग्राम जहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे इश्क और मोहब्बत की। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो उससे पहले आप हमें मैसेज कर दीजिए 5499124 पर।
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 12:20 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम बातें करते हैं मोहब्बत और इश्क और प्यार की, जहां पर आप बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं और बताते हैं कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है। तो ये ऐसे ही हमारे बीच में एक ऐसा जोड़ा कह लो, एक ऐसे दो भाई कह लो जिनका नाम है, यस उनका नाम है साहिल एंड निशांत। वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम से हम लोगों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और साथ में हम लोगों को ऐसा लगता था क्या ये पढ़ना है, पढ़ाई है, पर हमारा शायद लगता है प्यार बन गया है आजकल फुटबॉल और पढ़ाई, हमारी बुक से हमारा हमें प्यार हो गया और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक प्यारा सा गाना चलाएं। तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं, पर हम आपको ये कहने वाले हैं जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हुई है इसकी बात की तो कोई मतलब उसको कोई और कम्पीट ही नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट चीज़ की आपने अपनी किताबों के साथ पढ़ाई कर ली, प्यार भी कर लिया और पढ़ाई भी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी बहुत सवर जाएगी। तो हम भी चाहेंगे कि सबको ऐसी मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। तो हम आपके लिए आपकी पसंद का गाना चलाएंगे ABCD2 मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन रघुपत जी, जो कि इस समय लंदन से हमें सुन रहे हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को। बट हम आपको बोलेंगे सर आपका मैसेज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ में हमारे साथ एक प्यारा सा मैसेज भेजा है, बट सर ने अपना नाम नहीं बताया, बट कहा कि अरमान मलिक का प्लीज़ गाना ज़रूर चलाइएगा, मुझे बहुत पसंद है और हम बिल्कुल चलाने वाले हैं आज। लवली संडे टू पूनम, हाई डैरन श्वेता रवीश प्रीशा लुवेशा नबादू फैमिली, हाय सर रोशनवास से, और हम आपको बोलते हैं आप सबके मैसेजेस आना अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी पुराने प्यारे से गाने सुनने का मन करे या 90s के या उसके बाद के भी, तो हम आपके लिए चलाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको मैसेज करना है 5499-1294 पर और बताना है आपकी पसंद क्या है। इंजॉय कीजिए आपका ये ट्रैक
0: लव लाउंज RM2 लव लाउंज।

0: लव लाउंज प्यार इश्क मोहब्बत लव लाउंज
1: 12:37 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ में और मैं हूं आपके साथ इस समय पूनम। कहते हैं किसी को प्यार देना सुंदर बात है, लेकिन किसी को सुकून देना उससे भी खूबसूरत बात है। यही बात लिखते हैं खालिद जी फायजा के लिए और फायजा सिर्फ इतना कहती है कि तुम इतने खास हो मेरे लिए, जैसे कि मतलब चांद हमें पसंद है, जैसे कि सूरज हमें पसंद है, वैसे ही मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी जब तुम कहते हो ना कि हाँ सब कुछ मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे एहसास होता है इस बात का। सिर्फ मुझे लगता नहीं कि सिर्फ तुम कह रहे हो, ये सच बात है कि अगर ऐसे कोई प्यार करता है अपने पार्टनर से या अपने उस इंसान से जिससे बहुत मोहब्बत होती है तो अच्छा लगता है। और थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए और हम आपको यही बोलेंगे आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हमेशा खुश रहें। विद्वाग विदेशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय और बहुत ही प्यार से लिख रहे हैं कि मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहता था सब कुछ पाया, पर जब पाया किसी एक खास इंसान को, उसका नाम है अनुषा, और उनको इतना ही कहना चाहता हूँ तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए क्योंकि तुमने मुझे जीना सिखाया। और मुझे इतना भी एहसास है कि कहीं ना कहीं अनुषा भी यही सोचती होंगी कि उन्होंने मुझे जीना सिखाया। ये हमेशा ही होता है, जहाँ प्यार प्यार होता है, जहाँ पे किसी और चीज़ की इच्छा नहीं होती, बस वहाँ पर एक दूसरे की केयर इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए भाई, जो फैज़ा और खालिद ने गाने की फरमाइश की है, हम उसको चलाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आशिकी मूवी से आप सबके लिए।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: कहते हैं हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन दिल की से अगर कोशिश कोई करता है वहाँ रिश्ते टूटने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं. तो हम भी इतना ही कहेंगे आपको, अगर आपके रिश्तों में कहीं भी थोड़ी मोटी कहते हैं छोटी छोटी सी क्रैक्स आ रहे हों, उसको फटाफट से भर दीजिए. और मुझे लगता है एहसास होता है कि सभी को पता होता है कि कहाँ किसकी गलती है, बट कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है आसानी से.

पर एक टाइम आता है जब उन्हें एहसास होता है कि हमसे गलती हुई। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसे लिसनर हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते बट इतना कहना चाहते हैं, मेरे सामने वो बैठी है जिसे मैं कई सालों से कह रहा हूँ एक बात कि मेरा साथ दे दो, पर वो नहीं दे रही, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि वो मुझसे प्यार तो बहुत करती हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, बस सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने कहीं कोई गलती की छोटी सी और वो अभी तक उस गलती को भुला नहीं पा रही। तो प्लीज़ ये गाना ज़रूर चलाइएगा और वो गाना

0: आपको यही बोलूँगी मैम, जितनी मोहब्बत आपसे ये कर रहे हैं, बस आप भी उनका कहते हैं ना कि प्यार वापस कीजिए और साथ चलिए अगर हो सकता है तो। अगर उनकी कोई ऐसी गलती है जिसको ठीक किया जा सकता है या उन्हें माफ़ किया जा सकता है तो माफ़ कर दीजिए। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय रोशान जी, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं सिमी के नाम, और हम चलाने जा रहे हैं आप दोनों के लिए प्यारा सा गाना। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने गाना बताया बहुत ही खूबसूरत है, आप दोनों को पसंद आएगा। इंजॉय कीजिए ये वाला सॉन्ग।
1: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North,
3: South,
4: 103.5,
5: East,
6: West,
7: 96.4,
8: Center,
7: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
9: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना, आपको नमस्कार।
10: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में ओइस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ओइस्टर की पैदावार के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर

0: निर्भरता कम करना। ड्रग्स के मामले में दो मलगासियों को 24 और 25 साल कैद की सजा दी गई है। अलजीरा मुतमिनिर और जुबैदा सेनेर को कल सजा सुनाई गई। 6 अगस्त 2019 को इन दो महिलाओं को प्लेजांस के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। वे जोहान्सबर्ग की फ्लाइट से मॉरिशस पहुंची थी। नेहरू अस्पताल में उनके शरीर से 155 कैप्सूल्स बरामद किए गए थे, जिनमें 26 मिलियन रुपए लागत के कुल 1.7 किलो हीरोइन ड्रग्स बरामद थे। रिपाई आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ का आयोजन किया गया। आर्य समाज के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर ये रहा। विदेश समाचारों में वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई। कनाडा को उसने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पैराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रहीं और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस बाजी मार गया स्कोर 1-0। आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ। रात 9 बजे मैच का सीधा प्रसारण आप एमबीसी पर देख पाएंगे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:06 हो चुके हैं, संडे का प्यारा सा दिन चल रहा है और कहते हैं ना दोपहर का टाइम थोड़ा सा सुकून वाला होना चाहिए। 5 जुलाई आ गई भाई, पता नहीं चल रहा है, साल में से आधा तो साल ख़त्म हो गया, पर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं तो ये साल भी बहुत ही सुंदर और प्यारा सा निकल जाएगा। चलिए जी, हम थोड़े से 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज है, आज है बर्थडे अनिकेत जी का और उनकी वाइफ उनके लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं उनको, और उनको बस ये इतना कहना चाहती हैं कि मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ, बट बताया तो नहीं आपने अपना नाम, वही भूल गई अपना नाम, तो कोई बात नहीं, पर हम आपको यही बोलेंगे आज आपका बर्थडे है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी एमबीसी टीम की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं आपका ये जो बर्थडे है बहुत ही खुशियों भरा हो, अपनी पत्नी के साथ हो, इंजॉय कीजिए, मुस्कुराइए और बस हंसते रहिए। चलिए जी, इसके साथ में आज है गोवर्धन जी का भी बर्थडे, जो कि आज 75 ईयर्स के हो गए हैं, उनके पूरा परिवार उनको विश कर रहा है और उन्हें यही कह रहा है कि आप हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज, और हम भी आपको सर यही कहेंगे, अपना बर्थडे बहुत खुशी से मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। साथ में ही ऋषभ जो कि फ्लाक से हैं, आज उनका भी बर्थडे है। क्या बात है, आज इतने सारे बर्थडेज हैं, बट बहुत अच्छी बात है, जितने भी बर्थडेज हो हम सब के लिए विश करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार आपके साथ रहे और इन्जॉय कीजिए अपने गाने। ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि हमारे लिए हमने अनिकेत जी के लिए ढूंढा है, उनकी पत्नी ने जो बोला है हम वो चलाने जा रहे हैं। इंजॉय कीजिए अपने ब्यूटीफुल गाने।
0: लव लाउंज RM2 लव लाउंज।

प्यार में सबसे प्यारी बात क्या है जानते हैं? जब कोई आपकी छोटी सी खुशी भी नोटिस करे, वहीं पर दिल पिघल जाता है। और अगर आपका दिल पिघल रहा है किसी के लिए, तो मैसेज कीजिए 5499-1294 पर।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:24 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपनी प्रोग्राम लव लाउंज के साथ इस समय, और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं अगर कोई आपकी थकान को समझ ले और आपको बोलना भी ना पड़े तो समझ लीजिए रिश्ता बहुत खास है। और अगर किसी ने बस पूछ लिया क्या थक गई हो, चाय पियोगी, पानी पियोगी, तो बहुत है। इससे ज़्यादा और लेडीज़ को कुछ नहीं चाहिए होता, और लड़कों को बस क्या चाहिए होता है, वो बोलते हैं आराम से बैठने दो भाई, पूरे दिन एक हफ्ता काम किया है, अब थोड़ा सा टाइम अपने घर में सुकून भरा हो चाहिए होता है उन्हें, तो बस आप अपने घर में बैठे इंजॉय कीजिए, जिसको काम करना करने दीजिए। तो चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस टाइम। मुझे लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप का जो भूत है ना, सबको चढ़ा पड़ा है। रात को तो सो नहीं पा रहे हैं, और सुबह सो रहे हैं, दोपहर में सो रहे हैं, और उसके साथ साथ गाने भी कौन से सुनते जा रहे हैं और मैसेजेस भेजते जा रहे हैं। चलिए जी, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वैदेही जी जो सेवास्तोपोल से हैं, साथ में और गीतिशा

और विशाल और सीचरन फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है। प्रिया जी अपने हस्बैंड विशाल को गाना सुनाना चाहती हैं और डॉटर श्रिया सनील एंड पापा सतीश रामदीन जी को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है। नीरा खूबलाल जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ललिता जीतिन जी भी बहुत देर से आई हैं पर आ गई है आपकी, थैंक यू। दवी जी भी पारी से, देव जी भी पारी से साथ दे रहे हैं और एक प्यारा से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है पर अगर आपकी वाइफ आपको प्यार करती है तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। सच बात है, यही होता है। ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ साथ सबका प्यार भी मिलता रहे। साथ में इस समय हमारे साथ हैं कुमार देवी चरण जी जो कि अपने पापा के साथ में हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में हमारे संडे के लिए एक ब्यूटीफुल वॉइस मामा शारदा बगन एंड कजिन मनोज खिड़दुर और जो कि ये प्रोग्राम को सुनते हैं और सुया बिहारी जी जो कि साथ जुड़ी हुई हैं, एक प्यारे से गाने की फरमाइश भी कर रही हैं और कह रही हैं कि गाने मस्त चल रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ललित जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूँ। भाई कौन नहीं याद करता, कह रहे हैं कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ एक गाना सा चला दीजिए। हमने तो ऐसे ही टूटे फूटे गाने ऐसे चला रहे हैं जिसमें कहते हैं जिसमें दिल टूट जाता है और फूट जाता है और फिर हम उसको ग्लू लगा के जोड़ देते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही हाल हो रहा है तो कोई बात नहीं, इन्जॉय कीजिए गाने और साथ में अपनी वाइफ को बिल्कुल मत मिस कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए और पूछिए क्या हाल चाल है। चलिए भाई ये गाने आपकी तरफ चल पड़े हैं और इन्जॉय कीजिए ये गाने।

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 1:45 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ और मैं हूं आपके

0: के साथ पूनम। कहते हैं ना, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपके दिन को ब्राइट कर देते हैं। दिन तो वैसे ही ब्राइट होता है, पर अगर आपको दिन में भी होता है तो और भी उजाला हो जाता है, और रात हो तो वो ब्राइट कर दें तो कितना अच्छा लगता है। तो उनसे बात हो जाए, उनके मैसेजेस आ जाए, सिर्फ आपसे आपका ख्याल पूछ लें तो कितना अच्छा रहता है। अगर आपको भी कोई पूछता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, तो ज़रूर उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए उनका भी हाल। तो चलिए भाई, हमारे साथ भी कुछ लोगों के मैसेजेस जुड़े हुए हैं जिससे उनके दिल का हाल भी पता चलता है। इस समय हमारे साथ में है मुरली प्रसाद गुप्ता जी, जो कि इंडिया से हैं और वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए इतना ही सिर्फ कहना चाहते हैं कि हाय, मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। मैं तो ये कहती हूँ, वही किसी का भी दिल नहीं लगता। तो जहाँ भी हैं, हमेशा हर कोई खुश रहे और आपके साथ जल्दी आपको टाइम मिले, और या आप वहाँ जाएँ या वो यहाँ पर आएँ, और बस आपकी ज़िंदगी ऐसी खुशनुमा चलती रहे। चलिए, हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं त्रियोली से एक मामा, जो अपनी बेटी के लिए एक विश करना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि केविन जी आएंगे और अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी है, और वो कह रही हैं कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैंने बहुत नाजों और प्यार से पाला है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है, हर माँ की इच्छा यही होती है कि उसका बेटी का हस्बैंड आए और उसे प्यार से लेकर जाए और हमेशा उसका ख्याल रखे। तो यही आपका भी दिल की बात होगी, तो हम उनके लिए भी एक प्यारा सा गाना चलाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। निशाल का मैसेज आया है, नॉर्मली सूरज शर्मा साजदा जी का आता है, पर आज आया है निशाल का मैसेज अपने पापा यानी कि सूरज शर्मा साजदा जी के लिए, और उनको कह रहे हैं कि आज आपका बर्थडे है, हमेशा आप मेरे लिए मैसेज करते हैं, पर आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि आप, यू आर द बेस्ट फादर। कहते हैं कि आप जैसा फादर हो तो फिर इंसान को और क्या चाहिए। क्या बात है भाई, ऐसे एक दूसरे के मैसेजेस आते हैं, प्यार मिलता है और प्यार देते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में हमारे साथ में और एक दोस्त जुड़े हुए हैं इस समय, जिनका नाम है कमल, जो कि यूएसए पोर्चुगल से हैं, और कह रहे हैं आपका प्रोग्राम यहाँ पर चलता है और मेरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सभी को, और मैं यही कहूँगी कि थैंक यू आप सबको जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। इन्जॉय कीजिए अपना ये गाना, और आपकी बिटिया के लिए हम इतना ही कहेंगे, हमेशा नाजों और खुशियों से अपने घर जाए और प्यार बरसाए, और जिन जिन की भी शादी है उनके लिए ये गाना एंजॉय कीजिएगा, ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: लव लाउंज RM2
2: लव लाउंज

चलते चलते बस एक बात कहूंगी, जिंदगी को थोड़ा सा लाइट रखो, थोड़ा सा हैप्पी और थोड़ा सा म्यूजिकल। मैं थी आपके साथ पूनम, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए गाना।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 2 बज रहे हैं.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.
5: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत हो रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी. 1 जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है. ये बजट 2026-2027 में ऐलान कदम है जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना. वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं. मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है. इससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा. इसका मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम कर पाना.

0: ड्रग्स के मामले में दो मलागासियों को 24 और 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अजीरा मंतुबेने और जुबेरा उसेनेर को कल सजा सुनाई गई। 6 अगस्त 2019 को इन दो महिलाओं को प्लेजेंस के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। वे जोहान्सबर्ग की फ्लाइट से मॉरिशस पहुंची थी। नेहरू अस्पताल में उनके शरीर से 155 कैप्सूल्स बरामद किए गए थे, जिनमें 26 मिलियन रुपए लागत के कुल 1.7 किलो ड्रग्स हेरोइन छिपाए गए थे। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कनाडा को मोरक्को की टीम ने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पैराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रही और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस से बाजी मार गया। स्कोर रहा फ्रांस 1 और पैराग्वे 0। आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ। रात 9 बजे मैच का सीधा प्रसारण होगा एमबीसी पर। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: So well friends, 2:09, that was a beautiful song to start with. Lal Ishq, Malal Ishq, Arijit Singh ki awaaz. Aur aaj mausam kuch aisa hai, aashikana mausam, aur aise mein aapke liye lekar aaye hain plug and play. Main hoon Pari aapke saath, and umeed karte hain you are enjoying your Sunday. Waise sardiyon wali ye dopahar, jahan par aaj to kaafi badal chhaye hue hain and barish bhi ho rahi hai. So is barsati mausam mein aap bhi hamara saath dijiye, and mausam ka kya haal chaal, updates aap ab tak pahuncha sakte hain on 5499-1294. Well friends, जैसे हम कहते हैं संडे इज टू रिलैक्स टू चिलैक्स, तो आपके लिए कुछ ऐसे गाने जो आपके मूड को सेट रखने वाले हैं. और अगर आप भी हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं, नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

सो वेल फॉर दिस संडे आफ्टरनून आपके लिए कुछ बहुत ही प्यारे गाने हम लेकर आए हैं. कुछ गाने ऐसे जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, लेकिन जब रिलैक्स करने का टाइम होता है, जब संडे का दिन होता है, तो ये गाने अलग हिट करते हैं. सो दैट्स इन द वॉइस ऑफ अंकित तिवारी फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. आपके संडे को खास और स्पेशल बनाने वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एक ऐसा प्लेलिस्ट जो आपके दिल को बहलाने वाला है. और अगर आप भी साथ दे रहे हैं, योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर. यहां पर सीता जी हमारा साथ दे रही हैं, आप न्यू ग्रोव से, एंड डेडिकेट करना चाहती हैं गाना अपने पूरे परिवार के नाम. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर स्वीट फैमिली एंड विशिंग यू अ हैप्पी संडे. साथ ही यहां पर कैलाश जी हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी कहते हैं गाना हो जाए फॉर वाइफ प्रिया आज ऑन 5th of July. शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, सो उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. और कहती हैं शी हैज बीन अ बेस्ट लाइफ पार्टनर और उनके लिए बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ. That's really sweet. So on your special day, wishing you a very happy birthday. हमारी पूरी RM2 Radio मस्ती टीम की ओर से. और चलिए यहाँ पर कविता जी हमारा साथ दे रही हैं आप, और कहती हैं that सभी परिवार इस वक्त साथ दे रहे हैं. स्पेशली फॉर समवन जो इस वक्त कनेक्टेड है फ्रॉम रोजबेल, उनके नाम डेडिकेट करना चाहती हैं गाना. बिल्कुल जी. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ अंकित तिवारी हमारे सभी लिसनर्स के नाम दे रहे हैं साथ. सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस

0: Plug and play.
1: RM2.
2: So, well, friends, it's 2:48, 5th of July, and I do hope आप इस मौसम को enjoy कर रहे हैं, Sunday को enjoy कर रहे हैं, and Sunday बने ही होते हैं इसलिए ताकि आप पूरे हफ्ते के लिए एक बार फिर रिचार्ज हो सके. लेकिन हमारे कुछ दोस्त Sunday को भी relax कहाँ करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ काम आप जरूर निकाल लेते हैं. I do know कि आपको भी सब कुछ organize करना होता है, लेकिन थोड़ा सा me time, थोड़ा सा time to relax, थोड़ा सा टाइम टू चिलैक्स, इट्स मच नीडेड. जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा रिचार्ज करना भी ज़रूरी होता है. अगर पूरा हफ्ता काम करने के बाद अगर वीकेंड पर भी आप इन्जॉय नहीं करेंगे, आप रिलैक्स नहीं करेंगे, तो फिर बॉडी जो है वो आपकी एकदम गिवअप कर देती है. सो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाले, थोड़ा सा आराम करें, गो स्लो एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल संडे. अभी के लिए दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स के साथ आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर. यहाँ पर आ गई है एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी आफ्टरनून चाय और समगातों के साथ. सो एंजॉय योर संडे आफ्टरनून यलेश. सुरनाम से हमारा साथ दे रहे हैं सभी शाम परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम. ऐसे ही जुड़े रहें एंड कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. साथ ही यहाँ पर शीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप, और कहती हैं वंडरफुल सॉन्ग्स ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. थैंक यू जी. और आपको गाने पसंद आए ये जानकर हमें अच्छा लगा. अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. और चलिए कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल गाना मेरे नाम भी आप है. अखिल हमारे साथ कनेक्टेड है आप फ्रॉम नॉर्थ, और अभी इस वक्त जा रहे हैं आप सी साइड. ओके जी, इस मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, आराम से एंजॉय करें अपने संडे को, एंड वील हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप. आपके नाम डेडिकेट करेंगे फॉर ऑल योर लव्ड वंस एज वेल. साथ ही यहाँ पर रोशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप, और डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फॉर वेमी. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज ऑन 5th of July. सो उनके लिए प्यार एंड बहुत सारी शुभकामनाएं. तो चलिए दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज, एक और प्यारा सा गाना आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे सभी लिसनर्स के नाम. हैव अ ग्रेट संडे, एंजॉय दिस वन.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत हो रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी. 1 जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है. ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना. वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं. मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है जिससे ब्लू इकोनॉमी की निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा. मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना. सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर 2026 पहली जुलाई को पारित हुआ. ये 2012 के कानून की जगह ले रहा है. इस विधेयक के तहत नए नियम जोड़े गए हैं ताकि उन लोगों को नौकरी मिलने और समाज में दोबारा बसने और पहचान बनाने का मौका मिले जिन्होंने किसी अपराध के लिए सजा काट ली है. जहां एक और कुछ ऐसे अपराध हैं जो आजीवन मोरालिटी सर्टिफिकेट में बने रहते हैं, वहीं कुछ छोटे मोटे अपराध हैं जो हटा दिए जाएंगे. वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है. कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई. कनाडा को उसने 3-0 से हराया.

0: फ्रांस और पैराग्वे के बीच स्कोर रहा 1-0, फ्रांस 1 और पैराग्वे 0, और आज ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ रात 9 बजे। मैच का सीधा प्रसारण होगा एमबीसी पर। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड मॉडर्स्थालिया में 75 साल के 75 years old के जनाब अख्तर हुसैन सुभाची, जो हरश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉडर्स्थालिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोहिका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: tag and play.
1: RM2.
2: फ्रेंड्स, 3:07 आप सभी का वार्म वेलकम कर रहे हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है प्लग एंड प्ले। वैसे जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है कि आपकी लाइफ में कुछ गाने ऐसे होते हैं जब चल जाए तो लगता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे म्यूजिक के पास तो ये सुपर पावर है कि आपके हर इमोशन को वो बाखूबी समझ जाता है। वी हैव सम ऐसे सॉन्ग्स जो लगता है कि बिल्कुल हमारे लिए बने हो या फिर हमारी सिचुएशन को परफेक्टली सूट करते हो, तभी तो हम कहते हैं दैट म्यूजिक इज अ थेरेपी। और म्यूजिक को हर दिन ईच एंड एवरी डे वी सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन दिस संडे आफ्टरनून 5th of July, 3:08, वार्म वेलकम आपका इन प्लग एंड प्ले। और इस आवर में आपका हम स्वागत करते हैं। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का वार्म वेलकम ऑन 5499-1294, जहां पर मैं यानी कि परी कर रही हूं आपका इंतजार।
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2
0: प्लग एंड प्ले।
2: So for now, we have this special dedication goes out for Praveen, Vinay, Mahin and Gudul. Saath mein hai Sagar bhi. And specially from Thomas to Uncle Ramesh, jinhein wo bahut miss karte hain. So that's a beautiful track from the film Kayamat Se Kayamat Tak. कहते हैं ना कि लाइफ में अकेले भी क्यों ना हो, लेकिन बस वो एक स्पेशल सपोर्ट जो आपको मिलता है अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, वो भी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना ही देता है। So this one goes out specially हमारे सभी listeners के नाम and खास तौर पर for Praveen, Vinay, Mahin, Gudul and Sagar और Thomas की ओर से specially for Uncle Ramesh जिन्हें वो miss करते हैं।

0: RM2.
1: एंड जैसे हम कहते हैं सम सॉन्ग्स दे नेवर गेट ओल्ड, जब भी इन गानों को सुनते हैं लगता है कि इन गानों को बस सुनते जाएं. दैट वाज इन द ब्यूटीफुल वॉइसेस ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य और उनका साथ देती हुई कविता कृष्णमूर्ति. पहचान फिल्म का ये गाना, अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द 80s, एंड ये गाना था आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर आपका और मेरा साथ रहने वाला है टिल 4 पीएम. आज दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उनका नाम है बाबू लोहर, और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज दैट्स कमिंग फ्रॉम मिस्टर मुरली प्रसाद गुप्ता, उनके लिए भेज रहे हैं गुड गुड विशेज ऑन हिज स्पेशल डे. बिल्कुल जी, एक स्वीट सा डेडिकेशन आपके दोस्त के नाम. और साथ ही यहाँ पर मीला दिबिदिन हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं एक का प्यारा सा गाना आप जरूर चलाएं फॉर डॉटर करिश्मा एंड काजल, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. ललिता जीतन जी एंजॉइंग द प्रोग्राम अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ, और फैमिली भी है साथ में. फुल वॉल्यूम पर आप सुन रहे हैं हमारा ये प्यारा सा रेडियो स्टेशन, रेडियो मस्ती के गानों को एंजॉय कर रही हैं आप. साथ में है गीता, सरोज, वीना, कुमारी, ज्ञानती, आपके दो भाई संजय, विजय और सभी जीतन परिवार जो लव ऑनचे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी संडे. जीना जोयसरी, आप भी जुड़ गई हैं इस संडे को खास और स्पेशल बनाने विथ योर गुड विशेज. सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज. ऐसे ही प्यारी विशेज आप हम तक पहुंचाते रहिए एवरी डे, क्योंकि जब आपका मैसेज आता है, हमारे लिसनर्स का मैसेज आता है, वी ऑलवेज फील स्पेशल. मिस्टर कुमार देवीचन साथ दे रहे हैं आप भी, और कार वॉश करते हुए गानों को सुन रहे हैं. कहते हैं ना कि म्यूजिक इज अ परफेक्ट हम सफर, जहां पर गानों को सुनते हुए, रेडियो सुनते हुए पता ही नहीं चलता कि वक्त कहां बीत जाता है. सो बस अपने इस रेडियो को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखिए, और प्यारे गाने हम आपके लिए चलाते रहेंगे. डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली पापा श्याम देवीचन ऑफ पेबे, लव यू सो मच पापा. ये है स्वीट स्वीट मैसेज फ्रॉम मिस्टर कुमार देवीचन. ज्योति जी शातो बनारस से आप भी जुड़ गई हैं हमारे साथ. साथ में है अंशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मध्य परिवार जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं. वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम. चलिए दोस्तों, कुछ प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं. आज है संडे, तो म्यूजिक का मूड थोड़ा सा चेंज होता हुआ. मंडे टू फ्राइडे जब मैं आती हूँ लेकर योर बॉम्बे टॉकीज, चलते हैं कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स. मौका मिलता है सैटरडे ऑन संडे जब हम कुछ प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन कर सके. तो आज म्यूजिक का डोज थोड़ा सा डिफरेंट. कविता कृष्णमूर्ति वंस अगेन, उनका साथ देते हुए उदित नारायण फ्रॉम द फिल्म राजा भैया. एंजॉय दिस वन.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: And well, friends, that was a beautiful track. Deewana film ka ye gana. And ye to hum jaante hain. Almost first films offer Shah Rukh Khan, the King Khan of Bollywood. कहते हैं कि भाई नसीब तो बहुत अहम रोल निभाता है जब सफ़र की बात होती है, यानी कि अगर फिल्मी सफ़र की बात करें या फिर करियर की बात करें, किस्मत का साथ होना तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे किंग खान के साथ, जहां पर पहली ही फिल्म के बाद उन्हें इतना पसंद किया गया कि देयर वॉज नो लुकिंग बैक. तो दीवाना फिल्म का ये गाना था आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. हमारी सी रेखा जी, प्यारी सी रेखा जी, हैप्पी हैप्पी हो गई है इन गानों को सुनकर और कहती हैं बेटा अंश है फ्रॉम पोंबोजी, उनके लिए भी गाना जरूर डेडिकेट करें. बिल्कुल जी, गाना आपके नाम, आपकी स्वीट फैमिली के लिए, सबके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस. और कहते हैं दैट यहां पर गातो पताते तैयार हो रहे हैं राइट नाउ. हमारे अपाडू परिवार एंजॉय कर रहे हैं अपना हैप्पी हैप्पी संडे. सो चलिए अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम बहुत ही प्यार से. साथ ही यहाँ पर शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप भी. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू. और नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मेरे बाद आ रहे हैं संजय लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए. सो स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. मेरा तो अभी काम खत्म, लेकिन मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक मुलाकात होगी इन योर बॉम्बे टॉकीज. तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल संडे, अ ब्यूटिफुल संडे. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: शाम के चार बजे. सुनते समाचार यात्रा जी के साथ नमस्कार.
6: सभी को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 पहली जुलाई को पारित हुआ. ये 2012 के कानून की जगह ले रहा है. इस विधेयक के तहत नए नियम जोड़े गए हैं ताकि उन लोगों को नौकरी मिलने और समाज में दोबारा अपनी पहचान बनाने का मौका मिले जिन्होंने किसी अपराध के लिए सजा काट ली है. जहां एक और कुछ ऐसे अपराध हैं जो आजीवन मोरालिटी सर्टिफिकेट में बने रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे अपराध हैं जो हटा दिए जाएंगे. 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने जा रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी. पहली जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है. ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है जिसका मकसद है जरूरतमंद परिवारों की मदद करना. वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार पंजीकृत हैं. मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया तैयार की जा रही है जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके. मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है. कनाडा और मोरक्को के बीच टक्कर हुई और स्कोर रहा कनाडा 3 और मोरक्को 0. जबकि आज कनाडा को उसने 3-0 से हराया. जबकि आज फ्रांस और पराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई. पराग्वे की टीम की आशाएं अंतिम समय तक टिकी रही और फ्रांस की टीम का उसने डटकर सामना किया, लेकिन अंत में फ्रांस बाजी मार गया स्कोर 1-0. आज रात ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ 9:00 PM. मैच का सीधा प्रसारण होगा MBC पर. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. ब्रांच रोड मॉडस्थालिया में 75 साल के 75 years

0: सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आपकी संडे शाम सन के साथ वेलकम टू ऑल आवर डियर लिसनर्स। हमारा आपका साथ अभी से लेकर शाम के 6-7 बजे तक।
1: म्यूजिक टक टक आता
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: सेक्टर कटर
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: यकीनन गजब का है ये दिल और गजब का है ये दिन भी 4:18 यू लिसनिंग टू म्यूजिक टक संजय के साथ आज एवरी संडे 4-7 इस समय भाभी अंजू और भाई संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम नूवेल फ्रांस लिखते हैं लिसनिंग टू योर शो एज यूजुअल व्हाइल प्रिपेयरिंग बिरयानी वाओ बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम लोर फैमिली रिक्वेस्ट फ्रॉम शर्मा खुदाबख्स जी ऑफ यूनियन पार्क So all those listening to Radio Masti from Union Park in Ville-France, aapko hamara salaam.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: जी हाँ डियर लिसनर्स, आपको याद दिला देते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द प्लेटोज दैट यू डेली रात प्लेटोज जो आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट्स 11 और साथ ही साथ स्पोर्ट्स 11 पर जो लाइव मैचेस आप देख पा रहे हैं उसके उन सभी मैचेस के अलावा उन सभी प्लेटोज के अलावा यू गेट ऑल द मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप 2026 लाइव ऑन MBC प्ले जिसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा on your mobile aur uske sath you can even share it on your big screen ghar par apne bade tv par aap sab kuch dekh payenge on your mobile you'll be having the matches vivaran in french jabki on sports 11 it will be in english so abhi tak 8 in the round of 16 mein दो मैचेस खेले जा चुके हैं जिसमें मोरक्को ने कनाडा मेजबान देश कनाडा को 3-0 से हराया। हालांकि फर्स्ट हाफ में इट वाज रादर इक्वल, लेकिन दूसरे हाफ में मोरक्को ने एक्सेलरेट किया और एक के बाद एक तीन गोल्स दागे। सो फ्री जीरो फॉर मोरक्को, जबकि फ्रांस को इंतजार करना पड़ा इन द सेकेंड हाफ to be able to score one goal on penalty by Kylian Mbappe. Is ek goal ke saath Kylian Mbappe is on 7 goals for France, 7 goals equally for Lionel Messi and 5 goals for Erling Haaland in this present cup 2026. So 8 matches mein 2 matches samapt ho chuke, we've got 6 other matches. Brazil, Norway, Mexico, England, अब एक मेजबान देश तो चला गया, वो है Canada. Now Mexico, frankly speaking, I think that of the three teams, Mexico, USA and Canada, I think that Mexico is the best among the three. So Mexico playing against England. I would give a slight advantage to Mexico because it's playing home. Then Portugal versus Spain, USA, Belgium, Argentina, Egypt, and Akri jo round 16 ka match hoga, that will be between Switzerland and Colombia.
3: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews, and latest updates.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चार बजकर 55 मिनट, यू लिसनिंग टू टक टका टक संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर भी से आप हमारा साथ निभा रहे हैं, त्रियुले से हो, जहां से सूरज भाई एंड द होल फैमिली इज लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। हेलो संजय भैया, हेलो यलेश श्याम जी, थैंक यू, आप भी हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And the next one also going for the whole Debijan family of Berebere. And for all those jo videsh se hamara saath nibha rahe hain, aapko bhi thank you.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: संडे शाम 5:10 होने को है। नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन दिस सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक तक तक तक संडे के साथ योर ब्यूटीफुल संडे इवनिंग ऑन म्यूजिक मस्ती 4 to 7 तक। थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द म्यूजिक, थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द कंपनी। हंसुया जी हमारा साथ निभा रहे हैं, लिखते हैं कि उनकी माँ देवीना खाना बना रही है एंड गानों का मजा ले रही हैं। And she's a great fan of Kumar Sanu. Please feel free to send me your messages on 549-9294. और जितने भी लोग विदेश में हमारे साथ निभा रहे हैं, आप सबों का वेलकम तहे दिल से।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: बस गहरा हुआ फ्रॉम द फिल्म धुरंधर और इसी गाने पर नाशरीन ने एक बहुत ही फिटिंग मैसेज भेजा है फ्रॉम पोएट्री सीखते हैं यू कैन नॉट मेक सेंस टू अ पर्सन हु ओनली कॉम्प्रिहेंड्स थिंग्स एट देयर ओन लेवल ऑफ परसेप्शन गहरा हुआ थैंक यू नाशरीन फॉर योर मैसेज नेक्स्ट मैसेज लेते हैं हेलो संजी होप यू आर फाइन थैंक यू आई वांट टू डेडिकेट

beautiful song for my sister Hanushka, जो थोड़ी सी बीमार है, and I want to tell my sister that I love her a lot and she is my world and I pray God she gets well very soon. मैसेज है मीनाक्षी जी की ओर से फ्रॉम थ्वाबुचिक. मीनाक्षी जी, हम आशा करते हैं कि आपकी बहन हनुष्का जल्द से जल्द ठीक हो जाए. विशिंग हर अ क्विक रिकवरी. Next song going for the whole Sivasaran family of a flack. ये हैं जाना की ओर से मैसेज. मोती ब्लॉन्च की संगीता जी ने मैं याद किया, उनकी ओर से गाना चाहता है फॉर मेधा मनीष श्रिया आर्यन नील शीतल विक्की रितिना एंड नितिन. नीमा जीवन जी ने याद किया फ्रॉम मदालबे, वो कहते हैं कि आज उनके पापा प्रीतम प्रसाद का जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू प्रसाद जी. फ्रॉम वाइफ ज्योति एंड ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: इस संडे को द प्राइम टिप जो हम आपको देने वाले हैं, इफ यू वांट टू लुक फैशनेबल, गौर से सुनिए, इफ यू वांट टू लुक फैशनेबल सराउंड योरसेल्फ विद स्टाइलिश पीपल। जी हाँ, अगर आप फैशनेबल दिखना चाहते हैं तो आपको स्टाइलिश लोगों के संग चलना फिरना चाहिए। एक कोटेशन है, एक कहावत है, विच गोज लाइक दिस, इफ यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जो लोग आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। हु वी सराउंड आवरसेल्फ विद has an extremely important impact on our actions, on our behaviors and on our mindsets. हमारे चारों ओर जिनके साथ हम रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे स्टाइल पर, हमारे सोचने पर, हमारी सोच पर, हमारे विजन पर होता है। So we are an average of 5 people around us. And that is why wealthy, successful businessmen tend to be friends with each other. It's why fit, attractive CrossFitters are surrounded by fit, attractive CrossFitters in Instagram pics. और इसी कारण obese parents के बच्चे obese निकलने को tendency होती है. So this is what we need to know. When it comes to your style, that's exactly what you need to know. If you want to improve, you need to surround yourself with people with the same goals as you. इस पर ख्याल रखें, इस पर सोचें और देखें कि किस तरह से ये टिप आपके खुद की सोच, आप खुद की स्टाइल को बदल देती है। Surround yourself with stylish people.
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music, Tak Tak Tak.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: आरएमटू रेडियो मस्ती।
2: रेडियो पर ऐसे गाने चल रहे होते हैं तो अपने आप मोहब्बत हो जाती है। Thank you for your messages wishing Didi Kavita Gunyadri of Suyak a very happy birthday. Message hai Soni ji ki or se. Very happy birthday to Zaid Khan. Unke sabhi films mujhe bahut hi pasand aate hain. Ye hai message Anita ji ki or se. Aur Anita ji likhti hain ki unke papa Sanjay Khan bhi bahut hi handsome the. माला जी जो इस समय हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम मास्टर रोड कटरबोन, उनको गाने भी बहुत ही पसंद आ रहे हैं। फोहन फॉर हर फैमिली जाता है अगला गाना। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन गोइंग टीना जी फ्रॉम शामोनी, उनकी ओर से फॉर शिवम तेजस्वरी विमला रीता बबीता एंड उर्वशी एंड द होल फैमिली। साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर डारेन श्वेता रविश प्रशांत रवेश राव रोशनो। अमेजिंग प्लेलिस्ट मूड सेट लिखते हैं। थैंक यू। सो मिलते हैं समाचारों के बाद अनदर सेट ऑफ गुड म्यूजिक जो हमें यकीन है आप लोगों को भाएगा। दैट विल बी आफ्टर द न्यूज ऑफ 6 o'clock।

0: सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के समाचार बुलेटिन में स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच एल नीनो के तेजी से मजबूत होने की संभावना। इससे दुनिया के कई हिस्सों में गर्म की लू और सूखे तथा भारी बारिश जैसी चरम मौसम घटनाओं का खतरा। मॉरिशस में औसत पैदावार के विस्तार के तहत 11 समुद्री स्थलों के लिए जल्द टेंडर्स जारी किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना है। सितंबर में पोर्ट लुई थिएटर 6 वर्षों के नवीनीकरण के बाद फिर से दर्शकों के लिए खुलेगा। लगभग 475 मिलियन रुपए लागत तक के कार्य किए गए। विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 का रोमांच शुरू हो गया है। हर मुकाबला निर्णायक बन चुका है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने जा रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। पहली जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: केविन 48 साल के हैं और 8 बच्चों के पिता हैं। स्थायी नौकरी मिलने से पहले वे सोशल रजिस्टर में पंजीकृत थे और NEF की सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे थे। वे कहते हैं, 5000 रुपए का पेंशन मिलता था। बच्चों को स्कूल के सभी सामान मिलते थे, यूनिफॉर्म, बैग्स, जूते आदि। हाल में NEF से मदद मिली। फिलहाल कागितास लगभग 5000 परिवारों की सहायता कर रहा है, लेकिन इनमें से बहुत कम परिवार सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस SRM के लिए योग्य हैं। कागितास की महासचिव पैट्रिसिया अदेल फेलिसिते कहती हैं, कई लोगों को मदद नहीं मिलती क्योंकि इसके योग्य बनने के लिए मापदंड बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई अविवाहित माता अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही है तो वो SRM में शामिल नहीं हो सकती। कागितास में रात बिताने के शेल्टर हैं, बेघर लोगों का स्वागत करते हैं, वे भी SRM में शामिल नहीं हो सकते। बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2026 से सोशल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए योग्य बनने की नई एलिजिबिलिटी थ्रेशहोल्ड बढ़ा दी गई है। जूनियर समाज सुरक्षा मंत्री कुगान पागापेन कहते हैं,

0: Soit avant le budget pour revoir le seuil du SRM.
1: बजट से पहले SRM के मापदंडों पर बहुत विचार विमर्श किया गया, जिन पर करीब 3 वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। एक वयस्क के लिए 3,575 से 4,000 रुपए हो गया है और अगले साल 1 जुलाई से ये 4,250 हो जाएगा। इस कदम से अधिक परिवार सामाजिक सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकेंगे। फिलहाल करीब 5,200 परिवार SRM के योग्य हैं। मापदंडों पर फिर से गौर करने पर ये संख्या करीब 7,500 तक पहुंच जाएगी। 2,300 परिवार SRM की सेवाओं से लाभ उठा सकेंगे। नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का भी सहयोग मिलेगा। फिलहाल हर महीने सरकार 25 मिलियन रुपए खर्च करती है इन परिवारों की मदद के लिए। नए मापदंडों से ये रकम दुगनी हो जाएगी। बजट में विकलांग लोगों के लिए दिए जाने वाले अलाउंस की समीक्षा की भी घोषणा की गई है। इस उद्देश्य के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
2: मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी, जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुतोदो के इस जल क्षेत्र में खेमराज प्रसाद पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से ऑयस्टर की पैदावार कर रहे हैं। वे उन दो ऑयस्टर उत्पादकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए अधिकारियों से एक बगासवा किराए पर लिया है। वे कहते हैं, मैं करीब 1 मिलियन ऑयस्टर की पैदावार करता हूं, जो गर्मी में बड़े होते हैं। हम जाल बनाकर समुद्र में हर जगह रखते हैं। 3 महीने बाद ये ऑयस्टर आकार लेने लगते हैं। तब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वे ज्यादा नाजुक होते हैं। खेमराज अपने ऑयस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मॉरिशस स्टैंडर्ड ब्यूरो के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। हर रोज उन्हें साफ करते हैं। जितनी पैदावार मैं करता हूं वो काफी नहीं है। भविष्य में सरकार की फिर से मदद लेंगे। सिर्फ बगासवा में पैदावार नहीं की जाती है, गहरे समुद्र में भी होती है, जिससे ज्यादा लाभ होता है। उन्हें ज्यादा खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। और इसके अलावा इस बगासवा का उपयोग कैकड़ों, खासकर प्रसिद्ध गौले प्रजाति के पालन और क्लैम की सीमित स्तर पर पैदावार के लिए भी किया जाता है। कृषि उद्योग मंत्रालय के संचालन में आने वाले 9 बगासवा में से फिलहाल केवल 2 ही कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को गति देने के लिए कई नए उपायों पर काम किया जा रहा है। कृषि उद्योग, खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य मंत्रालय के कार्यवाहक सहायक निदेशक मनोज फाकू कहते हैं, EDB एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर काम कर रहा है ताकि ऑयस्टर की पैदावार में रुचि रखने वाले लोगों की मदद कर सके। 11 जगहों की पहचान की गई है। सभी परियोजनाओं को EIA से गुजरना पड़ेगा और सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करना होगा। प्रोत्साहन देने वाले इन उपायों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी के योगदान को बढ़ाकर GDP के 20% तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
2: आर्य समाज हिपा के आर्य समाज की सदस्य कल एक साथ जुटे। वहाँ पर एक नए मंदिर के उद्घाटन के लिए विशेष पूजा की गई। साथ में वैदिक विधि विधान पूरे किए गए और सभी भक्तों को एक साथ जुटने का मौका इस पर मिला। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: वैदिक मंत्रों और प्रार्थनाओं के पाठ के बीच हिपाई समुदाय के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। इलाके के दूसरे आर्य समाज मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके अध्यक्ष उदय कुमार गोरा कहते हैं, रिपाई आर्य समाज उतना सक्रिय नहीं था। करीब 9-10 साल पहले हमने इसे फिर से सक्रिय किया। हमारे पास अब एक छोटा मंदिर है जहां नौजवानों के बीच आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सकता है। आध्यात्मिकता और श्रद्धा से भरे वातावरण में ये पूजा स्थल प्रार्थना, वैदिक मूल्यों के प्रसार और समुदाय को एकजुट करने के लिए

0: समर्पित स्थान के रूप में स्थापित किया गया है। रिपाई आर्य समाज के सचिव अमरचंद करीमन कहते हैं,
1: यहाँ पर यज महायज बहुत से ऐसे गतिविधियाँ करेंगे जो कि सभी वर्ग के लोग के इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में अवगत करना। इन सब बातों के लिए हमने इस आर्य मंदिर का निर्माण किया और आज काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद हम लोगों ने इस मंदिर को खड़ा किया और हमारे लिए आज गर्व की बात है कि हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त कर दिया।
0: पवित्र अनुष्ठानों से सजिए प्रतीकात्मक समारोह श्रद्धालुओं के अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है।
2: पहली बार के लिए मॉरिशस में मक्कल मुकर्रमा सोसाइटी और एमबीसी के सहयोग से कुरान की तिलावत की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कंपटीशन जुलाई महीने के अंत में शुरू होगी। एमबीसी में आज जुड़े सदस्यों के साथ इसकी तैयारी के लिए सब इकट्ठा हुए।
3: प्राप्त 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से 13 से 17 साल के 36 नौजवानों को 2026 कुरान खानी मुकाबले के 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। मुकाबला शुरू होने से पहले एमबीसी में एक इंटरैक्टिव सत्र लगाया गया ताकि प्रतिभागी कंपटीशन की शर्तें बेहतर समझ पाएं और अपनी तजवीद बेहतर करने पर काम कर सकें। जूरी के सदस्य शेख मोहम्मद सलमान बलाकी कहते हैं,
4: कुरान
3: पाक की आयतें पढ़ने का एक सही तरीका होता है जिससे कि उनके मायने वाज़े हों और न बदलें। इसलिए हर लफ्ज, ठहराव, आवाज के उतार चढ़ाव की अहमियत होती है और इनका पालन करना लाजमी होता है। कारी मंसूर कहते हैं,
5: कुरान ए नाशो प्लस से की वापिल इब्तिदा ए ओए नाशो प्लस को तो वो बिजा के वक्त पके इनवा कोमेंसे ले पोट कोच सा ए वो अरेते ले पोट कोच सा।
3: प्रतिभागियों को कुछ सलाह दिए गए जो वे अब अपनी तजवीद बेहतर करने के लिए अमल में ला सकेंगे। मॉरिशस में पहली बार हो रहे इस मुकाबले का मकसद है कुरान पाक की तिलावत को फरोख देना। मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी के प्रेसिडेंट अनस अशरफी कहते हैं,
6: एमबीसी
3: उर्दू डेस्क के जिम्मेदार अनवर दस मोहम्मद कहते हैं,
7: हम सोच रहे हैं कि आइंदा 13 से 17 के बजाय हम इसको ज़्यादा फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद के हकदार हैं वो वालिदैन, वो असातिज़ा, वो उस्ताद और वो तमाम वो कैंडिडेट्स, वो तमाम बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और मैं ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो इनामात रखे गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। पहला इनाम एक उमरा टिकट के लिए फुल पैकेज बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ, और दूसरा इनाम एक उमरा टिकट, और तीसरा इनाम 25,000 नकद यानी कि कैश प्राइज। और यही नहीं बल्कि तमाम जितने भी फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए भी अलग अलग जो है तहाइफ रखे गए हैं।
3: 4 प्रीलिमिनरी राउंड्स 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को लगेंगे। इनका प्रसारण हर शुक्रवार को एमबीसी चैनलों पर किया जाएगा। चौथे राउंड के बाद फाइनलिस्टों की घोषणा की जाएगी। मुकाबले का फाइनल सितंबर में लगेगा।
2: विश्व कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई। कनाडा को उसने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
8: मेजबान टीम कनाडा का वर्ल्ड कप का सफर पूरा हुआ। मोरक्को ने कनाडा को रोका। मैच की शुरुआत में कनाडा हावी था मोरक्को पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा मोरक्को अपना अनुभव दिखाने लगा। सेकंड हाफ की शुरुआत में ही हकीमी के फ्री किक पर

0: उनाही का गोल। इस पहले मौके पर पहला गोल मोरक्को ने कनाडा को चौंकाया। इसके बाद जैसे मार्श की टीम राह भटक गई, ऐसे में और एक गोल बनता है, फिर से उनाही का गोल। यहां से कनाडा कुछ खास नहीं कर पाया। ब्राहिम जाज के पास पर एक गोल बनाइए, दो शॉट दो गोल मोरक्को के लिए। दो गोल काफी नहीं रहे, अंत में रहीमी कनाडा पर कोई रहम नहीं दिखाता। काउंटर अटैक पर इंजरी टाइम में मैच का तीसरा गोल, कनाडा 0 मोरक्को 3। अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना फ्रांस से होगा।
1: विदेश समाचारों में अमेरिका के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज से 250 साल पहले अमेरिका को उसकी पहचान मिली। एक ऐसे देश ने जन्म लिया जो आज की भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इस खास मौके पर आज वहां आतिशबाजियां हुई, कई नई परियोजनाएं शुरू की गईं और कई उद्घाटन हुए। आज रैली के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने भारी भीड़ के समक्ष अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका का सपना वापस आया है। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम से आ रहे सक्रिय बादल कल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 17, अधिकतम 19 से 22, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है, मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम से एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके के करीब आ रहा है, जिस वजह से इलाके में मंगलवार से ठंडी और तेज हवाएं बहने लगेंगी और मंगलवार से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। कल सुबह सूर्योदय 6:46 पर, शाम को सूर्यास्त 5:42 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट ओपिमो में 77 साल की 77 years old की श्रीमती चंद्रावती शंकर, पैदाशी नाम रामलगन और जो प्रभावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनोद शंकर के मकान फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट ओपिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओबिश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। इंदिरा गांधी रोड पे चिराफे में 45 साल के 45 years old के श्री शिव कुमार बनिया, जो अश्विन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान इंदिरा गांधी रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पे चिराफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। स्कूल लेन पेटी जूली में 71 साल के 71 years old के श्री ईश्वरलाल जगेसर, जो पिंगो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी अनीता जगेसर के मकान स्कूल लेन पेटी जूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

0: लावोंचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM ब्रांच रोड मॉडस्थालिया में। ब्रांच रोड मॉडस्थालिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री अख्तर हुसैन सुभाची, श्री अख्तर हुसैन, जनाब अख्तर हुसैन सुभाची, जो हरश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉडस्थालिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोगी का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM सिमेट्री रोड प्लेनमायो में, सिमेट्री लेन प्लेनमायो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितेश बुधन, श्री वितेश बुधन, जो निश्ले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शाम 4:30 PM उनकी माँ संध्या राबूजी के मकान शिमैसी मिचिया प्लान मायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 4:30 PM कालीमाई रोड रिविया जुहांपा में। कालीमाई रोड रिविया जुहांपा में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री अजागेन रंगासोमी, श्री अजागेन रंगासोमी, जो अविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Music, Dr. Gutter.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रविवार ही सही, लेकिन इस समय बहुत से घरों में शाम के जबकि 6:24 हुए हैं, संध्या का समय होता है, तो इसलिए ने प्रभु का राम सबों तक पहुंचाया। आप घर पर होंगे, काम पर होंगे, सफर में होंगे। Let's hope that this next week goes well for everyone. और सबों को खुशी मिले, सबों को राहत मिले, सब लोग स्वस्थ रहे। हमने यही प्रभु से प्रार्थना की। Welcome dear listeners in the third hour of Music Tak Takatak on the frequencies of Radio Masti, Sanjay ke saath.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जितने भी लोग इस समय घर लौट रहे हैं आफ्टर एवरी वेरी टायरिंग हार्ड वर्क एट ऑफिस या तो जहां पर भी आप काम करते हैं, विशिंग यू ऑल अ वेरी नाइस रिटर्न होम, जहां पर आपके लव्ड वंस आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी नाइस रिटर्न होम। नमस्कार विनीति जी, जो रिपाई से हमारा साथ निभा रहे हैं आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। नेक्स्ट सॉन्ग विनीति जी और साथ ही साथ कृष्णी जी जो कॉफ़ुको से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको हमारा सलाम, जय जय सियाराम आपको भी और फॉर द होल बीस मोहन फैमिली।

ये है मैसेज टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू स्वेहांस बकोरी और मिलेंस बेस्ट विशेस मामा रेशमी प्यारी बहन दर्शिनी दीदा रोहित दादी इंदिरा एंड अश्विन बकोरी की ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू स्वेहांस Keep on sending me your messages on 549-912-94.

जबकि 7 बजने में बस थोड़ा ही समय बाकी है, वेरी क्विकली एक लुक आपके मैसेजेस की ओर। जय सियाराम भाई जी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती। प्लीज डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग टू माय गुरु जी ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। मैसेज है सोना रानी, दिव्या, दिव्या दर्शिनी, दिया एंड सोनी लोकेशन। थैंक यू देविका रानी जी फॉर योर मैसेज। हाय संजी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आल्सो टू पुपुशीला। थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। चले आगे बढ़ते हैं, जरा समय नहीं है। एक राज मोहब्बत के सीने में छुपाया है, इजहार लबों पे है, दिल कह नहीं पाया है। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्यालों में। अफसोस ये मैसेज पूरा नहीं आ पाया। And this one going for all those celebrating their birthday on this 5th of July, और उनमें से हैं मेरे दो जुड़े भाई धीरज और संजीव। हमसे थोड़े से छोटे हैं लेकिन देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं। मिस यू ब्रोस, लव यू बोथ ऑफ यू, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव किड्स एंड फ्रॉम द होल बकोगी फैमिली।

0: इसी खालीपन को भरने की हमारी कोशिश होती है। अगर प्यार न होता, अगर दोस्त न होते, अगर चाहत न होती, तो कितनी खाली होती ये जिंदगी।
1: म्यूजिक
2: रेडियो मस्ती।
0: Last round of your messages before I leave you in the safe hands of my dost Nikhil. Purnima ji, hamara saath nibha rahi hain from Triolet. Purnima ji, aapko hamara salam. Thank you for enjoying this musical ride. Abhi ke liye. Next song going for Big Brother Manoj Kirodhar, Suya Bihari ki or se from Kongoma. Thank you, Sanjeev, for these beautiful songs.

Purudu of Highlands, and equally from Daddy Veda Purudu. और ये आखिरी मैसेज लेते हैं संजनी जी की ओर से, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे उन्हें खास दोस्त के नाम जिनका कल जन्मदिन है. सो फॉर ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑन टुमारो 6th of July, you will be sharing your birthday with nothing, no one else than the king of the Dhurandhar king of Bollywood, arthat Ranveer Singh. So, filhal, time for me to sign off. Take good care of yourselves. Bye bye. Love you all. Jai Siya Ram, Jai Mauritius.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार नमस्कार मॉरिशस, कैसे हैं आप सब? जैसे आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा है, मैं थोड़ा सा ग्रीपे हूँ। जुलाई का पहला संडे है और ये सर्दी जो है ये निकलने का नाम ही नहीं रह रही है बिल्कुल। और आज की शाम के लिए आपके साथ लाया हूँ 2 घंटों का एक अनोखा सफ़र जिसका नाम है बॉलीवुड सिज़्ज़लर ओनली ऑन RM2। चाहे आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हों, रोड पर ड्राइव कर रहे हों, या फिर मंडे की तैयारी करते करते थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के बेहतरीन तराने। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चलिए इस संडे को मनाते हैं और भी यादगार। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस बॉलीवुड सिज़्ज़लर स्पेशली फॉर यू, दिल दिया गल्ला।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, जुलाई का पहला संडे, उसका पहला बॉलीवुड सिज़ला। जुलाई का पहला संडे हमें ये याद दिलाता है कि साल का आधा सफर भाई तय हो चुका है। या मैं बिलीव नहीं करता कि कुछ अपने वक्त से बाहर होता है, या तो लेट होता है या तो अर्ली होता है। हर कोई, हर चीज़ जो है वो अपने वक्त पर होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ प्लान्स पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त है भाई, इस साल का आधा पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है। कभी अभी बस दो मिनट रुक कर अपने फेवरेट धुन सुनना भी एक तरह का सेल्फ केयर ही होता है। और इस सेल्फ केयर में अगर अपना खुद का डीजे या आरजे मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। जी हाँ, आप भी भेज सकते हैं आपकी फरमाइश, आपके स्पेशल गाने 5499-1294, क्योंकि ये लम्हा बस दो घंटे चलने वाला है।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं कि दिल हारने के लिए, दिल लगाने के लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी बातों में हम खुशी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वो छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। मेरे लिए एक अच्छा गाना, छोटी सी हंसी, एक अच्छी कप चाय और अपनों का साथ, आपके लिए वो क्या है आप हमें बता सकते हो 5499-1294। अगर आपको कोई भी डेडिकेशन, कोई भी विश या खुद के लिए एक गाना मांगना है, कुछ भी चलेगा, बस आपका प्यार चाहिए। यहाँ प्यार से याद आया, प्यार भरे इस अगले नगमे की ओर हम बढ़ते हैं इन द वॉइस ऑफ जसपिंदर नरुला। ये आवाज शायद अब भूलने लगे हैं आप, लेकिन हम भूलने नहीं, भुलाने नहीं देंगे। फ्रॉम द एल्बम दीवाने ए दिल।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ का, की जिंदगी का एक साउंडट्रैक होता है. जैसे कि ये गाना मेरे साउंडट्रैक में है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है. हम माँ भाई बहन सबको लेकर सिनेमा गए थे ये फिल्म देखने के लिए, छूट लाइफ देखने के लिए. तो ये मेरी लाइफ का साउंडट्रैक हो गया. कुछ गाने हमें बचपन की याद दिला देते हैं, कुछ किसी दोस्त की याद दिला देते हैं, किसी टीचर की याद दिला देते हैं, या फिर किसी से लड़ाई हो गई थी इसकी याद दिला देते हैं. यहाँ आज देखते हैं आपकी यादों का दरवाज़ा खटखटाने वाले कौन कौन से गाने हैं. जैसे कि यलेशाम भाई के लिए, यलेशाम फ्रॉम सुरीनाम, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है विद द रिक्वेस्ट, विद अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है, चुनरी चुनरी, लेकिन उसका रिमिक्स वर्जन. लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर ओरिजिनल हमारे पास है तो रिमिक्स क्यों बजाए भाई. Yeah, especially for you, Yalesh Bhai, and all the listeners of Radio Masti. Chunari Chunari from BB number 1.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: मुझे हमेशा लगता है कि किसी की कदर तब होती है जब वो आदमी रहता नहीं, वो लोग जब रहते नहीं, तब हमें एहसास होता है कि वो कितने कितने कितने ज़रूरी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है तो उसका ख़ास दिन यही है, आज ही है कि आप उन्हें बता सकें कि आपके लिए वो क्या मायने रखते हैं। आज ही किसी अपने को बताइए कि वो आपके लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट है। 5499129। वैसे मैसेजेस तो हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, कुछ हाथ पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस मूड में कैसे आ गया। ये पहले मैसेज पढ़ लेता हूँ। हाय निखिल, भावना हियर। टुडे आई एम सेंडिंग एन वेरी इमोशनल मैसेज टू माय हस्बैंड भविष, हुम आई एम मिसिंग अ लॉट। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ आई एम अवे फ्रॉम होम एंड ही इज अलोन एट होम। कैन यू प्लीज प्ले

nice song for us, if possible. जी हाँ, ये अगला गाना हम करेंगे भावना और भविष्य के नाम. और साथ ही साथ जो कोई भी आशिक अभी अपनी आशिक या महबूबा से दूर हैं, उनके लिए खास ये अगला गाना हम करेंगे especially for रोशनी जी ने, जिन्होंने हमको मैसेज किया है for another song. वो हो सके तो चलाएंगे थोड़ी देर में. और हमें मैसेज मिला है फ्रॉम खुशमा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस. आपके लिए हम करेंगे ये गाना. और ये गाना साथ ही साथ जाएगा फॉर संगीता एंड हर फैमिली एस्पेशली. जी हाँ, ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी मिकी वायरस, तोसे नैना.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Welcome back. Bollywood Sizzler ki सेकेंड आवर में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी अपना रेडियो खोला है तो आपको बता दें कि यू आर लिसनिंग टू RM2 की इतनी मस्ती बस यहीं पर हो सकती है। जहां अभी हमारा जो म्यूजिकल शाम है वो थोड़ा थोड़ा म्यूजिकल रात बनने वाला है। बहुत सारी हिट गाने, आपके मैसेजेस और ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्स अभी भी बाकी हैं। कहीं मत जाइए क्योंकि द बेस्ट is yet to come. Abhi, meri bari, the next song is one of my favorite ones from the movie Jai Veeru Tenule. Agar aapko bhi ye gana yaad hai, to aap message karke zarur batana 5499-1294, 5499-1294 par rahega intezaar aapke pyar ka.
3: That's right. Pump it up.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: ये गाना हम करेंगे खासकर रोशनी जी के नाम और हिमेश रेशमिया के सभी जो फैंस हैं और इस फिल्म के सभी जो फैंस हैं उनके नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों, हम कभी कभी अपनी खुशियों के लिए दुआ मांगते हैं, कभी हम मुश्किलों को दूर करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बताएं सबसे प्यारी बात कब होती है? जब हम किसी और के लिए दुआ मांगे। शायद कोई इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहा है, या कोई बीमार हो, या किसी को बस हिम्मत की जरूरत हो, या कोई बस एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हो। हम उनकी कहानी जानते नहीं, लेकिन उनके लिए अच्छा जरूर सोच सकते हैं। आज इस संडे शाम चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं, एक छोटी सी मन्नत करते हैं कि हर घर में सुकून हो, हर दिल को उम्मीद मिले, जो अकेला है उसे अपना साथ मिले, और जो थक गया है उसे नई ताकत मिले। हम बस यही मन्नत करते हैं।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपके रिक्वेस्ट, आपके मैसेजेस, आपका प्यार भरे पैगाम हमारे पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं आपके एक आध मैसेजेस। वी स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट वन और ये एक्चुअली आंसर है भावना जी के लिए। भविष्य भाई ने हमको मैसेज किया है, उन्होंने दो चीजें मांगी है, एक तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना और दूसरा भाभी जी की होठों पर मुस्कान। उनका मैसेज ये है, पास होके भी कितने दूर हैं हम, पास होके भी कितने दूर हैं हम, पास ना होने का है मुझे बेहद गम। होगा इंतजार कब लौट आओगी तुम घर, होगा इंतजार कब लौट आओगी तुम घर, बेहद दर्द होगा ये दिल, ये दिन जल्द ना आएगा। जी हाँ, ये दिन मेरे भाई जल्द से जल्द आ जाए ये हम भी मन्नत करते हैं और आपके लिए चलाते हैं दिस नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हंसी तो फंसी। ये अगला गाना हम करेंगे एस्पेशली फॉर यशविन और वाकवा फ्रॉम जुलू, साथ ही साथ करेंगे ये सीता गीता बलोगाम फ्रॉम सातो बेनारस के नाम और आपाजू फैमिली ऑफ रोशनो के नाम। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द नेक्स्ट सॉन्ग जय नसीब हंसी तो फंसी।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी आशा करते हैं कि आपको ये सिलेक्शन पसंद आ रहा है, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि हर गाने के साथ एक याद छुपी होती है और इन गानों के साथ बहुत बहुत बहुत सारी यादें छुपी हैं। यहाँ खासकर अगर आपके आप अभी रोड पर हैं, अभी ड्राइव कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपसे कहेंगे कि जल्दी पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी है सेफली पहुँचना। गाने बजाते रहेंगे, आप बस आराम से ड्राइव कीजिए, दो तीन मिनट का की देरी ज़्यादा नहीं है भाई, बस पहुंचना चाहिए।

यहाँ इन्हीं गानों के साथ आज का ये बॉलीवुड सिज़लर की जो महफिल है यहाँ बस पर समाप्त होती है। मेरे साथ अपनी संडे शाम बिताने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि ये गाने आपके वीकेंड को एक खूबसूरत एंडिंग दे गए होंगे। कल से एक नया हफ्ता शुरू होगा तो नए जज्बे और नए मुस्कान के साथ उसका स्वागत करेंगे। मैं हूं निखिल, आपसे इजाजत चाहता हूं। ख्याल रखिए, सेफ रहिए और RM2 सुनते रहिए। गुड नाइट।

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार, स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम प्रोग्राम है लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। रात के 9 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है दिल से बॉलीवुड, यानी कि RM2 दिल से दिल को कनेक्ट करते हुए, जहां हर गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। सो आज की रात होगी यादों से भरी, हंसी से भरी और दिल की बातों से भरी। मैं आपका साथ दे रहा हूं विकास और कंटिन्यू टिल मिडनाइट। बस कोई ना कोई गाना होगा जो आपकी जिंदगी के प्लेलिस्ट में शामिल जरूर होगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।

0: नास्टी।
1: दोस्तों कभी नोटिस किया है कि कुछ गाने सिर्फ प्लेलिस्ट में नहीं होते, वो हमारी लाइफ की जैसे एक टाइमलाइन में लिखे होते हैं। एक गाना स्कूल की याद दिला देता है, एक का कॉलेज की, और एक उस खास इंसान की जिसका नाम सुनते ही आज भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो बस अगर आपको भी किसी के चेहरे को देखकर सोचकर मुस्कान आ रही है, तो क्यों ना एक प्यार भरी बात, दिल से भरे जज्बात उनके लिए हो जाए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: भाई कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक परफेक्ट गाना मूड को जरूर बदल देता है। चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो, ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हो, या पूरे दिन की थकान, बॉलीवुड के जो गाने हैं ये देते हैं एक इंस्टेंट रिचार्ज और उसके बाद शरीर एकदम फिर से हरकत में आ जाता है। तो बताइए आपके क्या हालचाल है, मूड ठीक हुआ? तो आगे बढ़ते हैं।

0: RM2 Radio Musti
1: Late Night Grooves RM2 पर और यहाँ पर अगर एक फन चैलेंज हो तो कुछ ऐसा हो, अगर आपको सिर्फ एक बॉलीवुड गाना चूज करना हो जो पूरी लाइफ बार बार सुन सकते हैं तो वो कौन सा होगा? डिफिकल्ट है ना, लेकिन इस बात में दम तो है, मजा तो आया ना। अपने आंसर को दिल में संभाल के रखिए क्योंकि हो सकता है कि इस गाने को आप वक्त के चलते बदल भी दें। अरे साहब, ये तो ब्यूटी है, मजा क्या है बॉलीवुड का, क्योंकि यहाँ पर हर सिचुएशन के लिए गाने बिल्कुल रेडी रेडी स्टेडी, लेट्स गो।

दस तो बज चुके हैं और रात अब धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगी है। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद ये वो वक्त है जब सिर्फ एक अच्छा गाना और एक प्यारी सी मुस्कान काफी होती है। वैसे अगर एक सवाल पूछूं, आप म्यूजिक किस मूड में सबसे ज्यादा सुनते हो? लॉन्ग ड्राइव पर, हेडफोन्स लगाकर, या फिर किचन में कुकिंग करते हुए? अरे साहब, जो भी रीजन हो, बस हम हो आपके पास। मैं विकास और अभी लेट नाइट ग्रूव्स आरएम2 पर।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: दोस्तों कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं बल्कि एक सिंपल सी बात से बनती है। एक कप चाय, बारिश की बूंदे, अपने लोग और बैकग्राउंड में बजता हुआ आपका फेवरेट बॉलीवुड गाना, बस मूड सेट। आज का सवाल यही कि आपके लिए परफेक्ट इवनिंग का मतलब क्या है? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताना या फिर अलग से अकेले में बस अपने फेवरेट गाने को सुनते जाना।

0: रेडियो मस्ती।
1: मैं सोचो कि अगर इमेजिनेशन का गेम हो तो एक दिन आपको अगर बॉलीवुड हीरो या हीरोइन का लाइफ जीने का मौका मिल जाए तो आप किसको चुनेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? डांस करेंगे, शॉपिंग करेंगे या किसी फिल्म के आइकॉनिक डायलॉग को बोलेंगे? मजेदार आंसर्स है ना। हाँ, दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सोचिए हम किसी और की जिंदगी को सोचकर अपने आप को खुश कर लेते हैं। अरे अपनी जिंदगी हम डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, तो जिंदगी जियो, जी भर के प्लान करो फ्यूचर के लिए।

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: एक छोटी सी बात याद रखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट मोमेंट जरूर होता है। बस उसे महसूस करना पड़ता है। अगर आप स्माइल करना चाहते हैं, मोटिवेशन पाना चाहते हैं, हो सकता है वो मोमेंट आज किसी गाने में मिल जाए, किसी मैसेज में हो, या किसी अपने की मुस्कान में। तो नेगेटिविटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, अरे थोड़ी देर क्या, हमेशा के लिए, और इस रात को म्यूजिक के नाम कर दीजिए। मैं आपके साथ सफर अभी जारी, अगले गाने की बारी।

दोस्तों घड़ी ने 11 बजा दिए, लेकिन अभी अपना प्रोग्राम पूरी तरह से जवान है। वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर बॉलीवुड का कोई गाना आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता तो वो कौन सा होता? क्या फुल ऑन एनर्जेटिक टाइप्स, रोमांटिक सोल, या फिर थोड़े से मस्ती खोर? चलिए, दिमाग में एक बार फिर से बहुत सारे जवाब घूम रहे हैं, लेकिन होता है कि जब आप थके हारे हैं और दिन को ख़त्म कर रहे हैं तो उस टाइम पर सॉफ्ट म्यूजिक ही पसंद आता है ना। चलिए अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर प्लेस ऑल सेट टू सेट योर मूड।

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: चलिए दोस्तों, एक लेट नाइट कन्फेशन करते हैं, और वो ये कि हर किसी के फोन में एक ऐसा गाना जरूर सेव्ड होता है जो कभी डिलीट ही नहीं होता। नया फोन आ जाए, प्लेलिस्ट बदल जाए, लेकिन वो एक गाना हमेशा साथ रहता है। उसकी कोई इमोशनल एक्सेप्टेंस, इम्पोर्टेंस कुछ तो होगी ना। तो बस वो जो गाने हैं ना, उनको एक सहारा लेकर, एक साथी लेकर जिंदगी में यूं ही चलते रहो, अपनी जिंदगी की सिचुएशन को बदलते रहो, और खुद से ये कहो कि गाना हमेशा, बॉलीवुड हमेशा स्पेशल रहेगा।

जिंदगी की रेस में हम अक्सर फिनिश लाइन देखते रहते हैं, लेकिन कभी कभी असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि सफर में छुपी होती है। जी हाँ, सफर में। आज सोने से पहले एक काम जरूर कीजिए, किसी एक इंसान को थैंक यू बोल दीजिए बिना किसी वजह के, या अगर वजह है तो और बढ़िया। हो सकता है आपके दो शब्द किसी की पूरी रात खूबसूरत बना दे। शुक्रिया उसका कि वो जिंदगी में शामिल है, आपके साथ है। यही काफी है ना। और अब दिल को छू लेने वाला एक और बॉलीवुड का गाना।

0: नेस्टी।
1: चलिए दोस्तों, देखते ही देखते आज का ये कार्यक्रम अपने अंजाम तक पहुंच गया। दिल से शुक्रिया आप सभी को जो अपनी यादें, अपनी मुस्कुराहट और अपना प्यार हम तक यूं ही पहुंचाते रहते हैं साथ देकर। उम्मीद है बॉलीवुड के इन सुरों ने आपकी रात को थोड़ा और खूबसूरत बना दिया होगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और याद रखिए हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। मैं आपका दोस्त विकास और अभी इजाजत चाहता हूँ। गुड नाइट, लेकिन जल्दी मिलते हैं RM2 पर। ध्यान रखिए।